91.2 MHz पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

कानवे दशमलव 2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते हैं।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, वो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक। केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
12: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
13: क्यों?
14: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
17: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
18: मैं तो बुरी थी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी।
2: उसका
3: पापा पापा दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है रहा।
5: बेटा खाया नहीं खाई।
3: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
2: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तुमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाएंगे टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। देखो देखो शुक्ला जी आ गए।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
15: वही असली तरक्की।
14: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
17: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
18: मैं तो बुरी।

श्रोताओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर के हाजिर हो गई हूँ मैं ज्योति पठानिया, आपके अपने पसंदीदा चैनल 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: और इस कार्यक्रम में आपके साथ रहूंगी मैं आज आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, कुछ भी कहने सुनने से पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक देशभक्ति गीत के साथ। ये एक ऐसा गीत है जिसे आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं,
1: सारेगामा का।
0: आप जानते ही हैं कि लता मंगेशकर ने जब इसे स्टेज पर गाया तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे।

जय हिंद की सेना। जी हाँ, ये आज का हमारा ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे वो नरम दल हो या गर्म दल, दोनों ने मिलकर के किस तरह से हमें इस आज़ादी तक पहुंचाया है। तो श्रोताओं, हम सब मिलकर के उन सभी सेनानियों को शत शत नमन करते हैं। बेशक वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के प्रयासों से आज हम आजाद हैं। तो चलिए, कार्यक्रम में हम आगे तो जरूर बढ़ेंगे, फिलहाल आज के मौसम के बारे में जान लेते हैं। इस समय जो तापमान है वो है 19 डिग्री सेल्सियस धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में। सुबह 11:30 बजे तक अनुमान जताया जा रहा है कि तूफान के साथ कुछ शुरुआत होगी और बारिश की संभावना 65% है। आपको ये भी बता दें श्रोताओं कि 11 बजे के करीब आज पुलिस मैदान में स्वतंत्रता संग्राम की परेड भी होती है, मार्च पास्ट होता है और चीफ गेस्ट भी वहां पर आने वाले हैं, तो राज्य स्तरीय समारोह वहां पर किया जाएगा। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर वो जाना चाहें तो जी जरूर जाइए, हम तो ये कहेंगे कि जाइए जरूर। यही कुछ दिवस तो होते हैं जब हमें अपने देश पर गौरव करने का मौका मिलता है। तो आज सारा दिन भर मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, अनुमान तो यही जताया जा रहा है। अधिकतम तापमान जो है वो 23 डिग्री तक जाने की संभावना है और रात का समय जो है न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हवा में नमी का स्तर जो है वो 83% है इस वक्त और 90% जाने के आसार हैं। तो आज पूरा दिन भर बादल छाए रहेंगे, गरज बरस के साथ बारिश होने का अनुमान है। श्रोताओ, इसी के साथ हम ले लेते हैं आज का विचार भी। तो क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो विचार भी आज हम अपना स्वतंत्र ही रखते हैं, वैसे हम स्वतंत्र ही बात करते हैं हमेशा आप सभी से। स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, हम अपने देश को और बेहतर, मजबूत और एकजुट बनाएं। इसका मतलब तो आप सभी समझते ही होंगे और अगर नहीं समझे तो हम आगे कार्यक्रम में आपको समझाएंगे जरूर। इस समय हम अपने फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो आप सभी हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जितने भी लोग हमारे फेसबुक पेज से इस समय जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद। कमेंट और लाइक कर देंगे तो शायद आपका नाम भी हमें फ्लैश हो जाएगा, अभी हमें नहीं पता लग पा रहा है कौन कौन है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि कार्यक्रम में आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आज तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है भाई, देश की बात हो और आप हमसे बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ एक बातें आज हम यहाँ से कहने वाले हैं तो ज़रूर देखिएगा और बात करने की कोशिश कीजिएगा। फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 7018117091। फिर से रिपीट करूं, 7018117091। और इस समय मेरे साथ टेक्निकल असिस्टेंट में हैं मैडम शशि, ये देखिए। और शशि भी पूरे देशभक्ति के रंग में सारा बोर हैं, ये देखिएगा। शशि ने भी अपना जो देशभक्ति का इंडिया का बैच जो है वो लगाया हुआ है। शशि बोलो जय हिंद। वैसे तो आज देश का बच्चा बच्चा, हर एक नागरिक जय हिंद बोलने के लिए तैयार है। और यहाँ
हम देख रहे हैं इंदु जी का मैसेज आ चुका है, वो भी जय हिंद बोल रही हैं, वंदे मातरम बोल रही हैं। जी हाँ, वंदे मातरम आप सभी को भी हमारी ओर से, पूरे रेडियो गुंजन परिवार की ओर से।

0: कदम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
0: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। ये श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की है। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ता ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे। और बस अब हम आ गए हैं आपसे करने बातचीत और साथ ही साथ देशभक्ति गीतों से करवाने आपका मनोरंजन भी। चलिए ये गीत सुनते हैं और फिर बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

ये गीत 1964 में आई निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, जिसे मशहूर शायर कैफी आजमी ने लिखा था, मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया और दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी। उन्नीस सौ बासठ के युद्ध की पृष्ठभूमि ये गीत 1962 के युद्ध, भारत चीन युद्ध की सच्ची दर्दनाक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अत्यधिक वीरता का परिचय दिया था।

इस गीत के माध्यम से एक सैनिक के आखिरी वक्त की भावनाओं को दर्शाया गया है कि कैसे वे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं और देशवासियों को अपनी मातृभूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप जाते हैं। आपने सुनी, जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। ये जो पंक्ति है ना, युवाओं और नागरिकों में देश के प्रति कर्तव्य एकता और सेल्फलेस सेक्रीफाइस यानी कि निस्वार्थ समर्पण की भावना जगाती है। हमें याद दिलाती है कि हमारी आज की आज़ादी हमारे वीरों के खून और बलिदान का परिणाम है।

तो श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है कि आज तो आप देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से सराबोर ही हैं और अब हमारी भी परीक्षा यहाँ से शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, कड़ी परीक्षा, क्योंकि कहते हैं ना कि कितना भी सोच करके आओ, आप जो सोचते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। तो हमने भी सोचा था कि आज आपसे लाइव, खूब लाइव करेंगे और अपने फेसबुक पेज से आपसे बातें भी करेंगे, जैसे हम लाइव यहाँ पर तो हुए हैं ही, लेकिन उससे भी होंगे, लेकिन चली गई है लाइट। और अब ये कब आएगी ये नहीं पता है, तो क्योंकि अब जानकारियों का सिलसिला भी हमारे कार्यक्रम में रहता ही है, तो आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आज बिजली जानी थी। तो 15 अगस्त को वैसे तो विद्युत लाइटों के सामान्य रखरखाव कार्य के चलते डिपो बाजार, अपर डिपो बाजार के आसपास क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी, ऐसी खबर थी। और मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा और लोगों से सहयोग की अपील भी की गई है सहायक अभियंता अभिषेक कटोच के द्वारा, विद्युत उपमंडल नंबर 1 के। परंतु अब यहाँ भी बिजली जा चुकी है, इंतजार में हैं हम कि कब बिजली रानी आएंगी। और हम वैसे तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर और स्मूदली और अच्छे से हम अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। मैंने शायद पहले भी किसी और कार्यक्रम में आपसे कहा है कि स्टूडियो के इस पार क्या होता है वो आपको नहीं पता होता है, लेकिन हाँ, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेरोक टोक आप तक हर एक बात पहुँचाएँ। और ऐसे ही बिजली कल भी कहीं जानी है, उसके बारे में भी अभी ही जान लीजिए। तो कल यानी कि 16 अगस्त को सिविल बाजार के आसपास क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी और मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। और इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। और आ जाते हैं हम अपने आज के विषय पे। आपको पता, आज ना सुबह मैं अपना जो रेडियो सेट है ना उसे ऑन करने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो 7 बजे जब मैंने उसे ऑन किया तो मैंने सुना कि भाई दिल्ली में तो ये सारा जो कार्यक्रम होता है लाल किले से वो तो शुरू भी हो चुका है। और उसके बाद फिर फटाफट मैंने टीवी ऑन किया और फिर दोनों ही जगह मैं सुन रही थी कि क्या कैसे चल रहा है। तो आज 15 अगस्त 2026 को भारत में अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के इतिहास में पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया, जो कि इसकी 150वीं साल पुरानी गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में।

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार देश को संबोधित किया है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया है। और अभी प्रादेशिक समाचारों में आपने बहुत कुछ सुन भी लिया होगा और मेरी ही तरह कुछ लोगों ने अपने रेडियो सेट्स और टीवी सेट्स ऑन किए भी होंगे कि वहाँ पर लाइव क्या चल रहा है वो देखने के लिए। इस राष्ट्रीय पर्व पर मोदी ने विशेष पत्रिका प्रिंट वाली पगड़ी स्टार रखी थी। अब दिल्ली से सीधा हम आ जाते हैं हमारे अपने यहाँ पुलिस मैदान में। तो आपको पता है श्रोताओं की 11 बजे से समारोह की शुरुआत होती है। वैसे प्रोटोकॉल तो यही है, धर्मशाला की पुलिस ग्राउंड में जो समारोह होने वाला है उसके बारे में आपको बताते हैं। इस बार कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी पधारेंगे, चीफ गेस्ट हैं वो मुख्य अतिथि, और सुबह 11 बजे पुलिस ग्राउंड पहुंचेंगे और अगर बारिश हुई तो डीसी ऑफिस में ये कार्यक्रम रखा गया है। डीसी ऑफिस का जो प्रांगण है ना बाहर का गोल चक्कर, वहाँ पर परेड होगी और वहाँ पर जाकर के आप इसका अवलोकन कर सकते हैं इन केस अगर वर्षा हुई तो। भव्य मार्च पास्ट से सुबह 11 बजे से शुरू होता है अगर हम ऑफिशियली बात करें तो। वैसे ये समय जो है आगे पीछे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मुख्य अतिथि कब तक पधारेंगे। वो पहले भी आ सकते हैं और जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसके चलते वो थोड़ा लेट भी हो सकते हैं। तो इस मार्च पास्ट में पुलिस बल, गृह रक्षा, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियां सलामी मंच के सामने से गुजरती हैं और ये मार्च पास चलता है करीब 11:45 तक। और आज इस मार्च पास की एक और विशेषता भी है, वो ये है कि जैसे कि धर्मशाला कॉलेज हमारा 100 साल इस बार सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि 100 साल धर्मशाला के इस साल हो रहे हैं पूरे, तो शताब्दी वर्ष ये चल रहा है और इसी के चलते ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की एक छोटी सी टुकड़ी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है सभी धर्मशाला वासियों के लिए और ख़ास करके उन सभी के लिए जो कि इस धर्मशाला कॉलेज से पढ़ चुके हैं या फिर अभी भी धर्मशाला कॉलेज में हैं। चलिए और क्या क्या होने वाला है वहाँ पुलिस ग्राउंड में या फिर डीसी ऑफिस में, तो उसके बारे में भी कार्यक्रम में ज़रूर आगे बात करेंगे। फिलहाल सुन लेते हैं एक और खूबसूरत सा गीत, देशभक्ति गीत, क्योंकि हमें पता है आप हमारी बातें भी बहुत तन्मयता से सुनते हैं। आगे मैं आपसे और भी ज़रूरी बात करूँगी, बने रहिएगा यूँ ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

भारत की सांस्कृतिक गौरव, ऐतिहासिक समृद्धि और वैचारिक पहचान का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है ये गीत। जी हाँ, ये प्रसिद्ध गीत 1965 की फिल्म सिकंदर आजम का है, जिसे कि राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था, हंसराज बहल ने संगीतबद्ध किया था और दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जादुई आवाज़ दी थी और साथियों ने भी साथ दिया था। सोने की चिड़िया, ये पंक्ति याद दिलाती है कि ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी आर्थिक ताकत, मसालों, कला और व्यापारिक प्रधानता के कारण दुनिया भर में सोने की चिड़िया कहलाता था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये गीत देश को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता की याद दिलाता है। भारत की असली ताकत को परिभाषित करती है इसकी एक एक पंक्ति। आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि बुद्ध, महावीर और गांधी के दिखाए मार्ग, सत्य और अहिंसा पर चलना भी है। श्रोताओ, इस गाने में ऋषि मुनियों की परंपरा, बच्चों में भगवान कृष्ण का रूप और भारत में अलग अलग त्योहारों, होली, दिवाली का जिक्र भी है। यह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की अखंडता और विविधता में एकता के संदेश को भी मजबूत करता है।

तो भाई पहले ही पंक्ति आ जाती है कि जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, जैसी पंक्तियाँ भारत की भौगोलिक सुंदरता और यहाँ के खुलेपन और आतिथ्य सत्कार को भी दर्शाती हैं, जो हर भारतीय के दिल में देश के प्रति गर्व पैदा करती हैं।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे आज पुलिस ग्राउंड में मार्च पास्ट की। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे वो दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक स्थानीय स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों द्वारा देशभक्ति से भरपूर रंगारंग कार्यक्रम और लोक नृत्य पेश किए जाते हैं।

और अंत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों के नाम रोशन करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाता है, जिसके बाद दोपहर 1:15 से कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो श्रोताओं, आप भी जा रहे हैं ना कार्यक्रम देखने के लिए या फिर इसमें हिस्सा लेने के लिए? देखिए, आज ना मेरे मन में भी ये दुविधा थी कि मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, लेकिन कहते हैं ना कि कमिटमेंट जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो मेरी कमिटमेंट पहले जो थी, मुझे लगा कि पहले वो करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ आई हूँ आप सभी से बातचीत करने के लिए, और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच करके वो प्रोग्राम भी अटेंड करूँ।

15 अगस्त जब घड़ी की सुई रात के 12 बजे पर ठहरती है तो हम सोचते हैं कि एक नया सूरज उगा था, लेकिन उस सूरज की किरणों में कुछ छांव भी थी, कुछ अनसुने दर्द और कुछ ऐसे फैसले भी छिपे थे जिन्हें इतिहास के पन्नों ने आज भी इतिहास से दबाकर रखा है।

ब्रिटिश संसद ने भारत को जून 1948 तक आज़ाद करने का प्लान बनाया था, लेकिन अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लगभग 10 महीने पहले यानी कि 1947 में ही खींच लिया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी, ठीक दो साल पहले 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था।

और दोस्तों माउंटबेटन उस जापानी आत्मसमर्पण के समय एलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। उनके लिए 15 अगस्त की तारीख उनके करियर का सबसे बड़ा विजय दिवस थी। उन्होंने अपनी इस निजी महिमा को अमर रखने के लिए भारत की आज़ादी का दिन भी 15 अगस्त ही चुन लिया, भले ही इसके चलते देश के दोनों सीमाओं पर खूनी संघर्ष का तांडव मच गया।

0: 14-15 अगस्त की आधी रात को जब पूरे संविधान सभा पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी को सुनकर के तालियां बजा रही थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं थे। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे।
1: देखो कौन मेरा पास होगा वतन पे जो फिदा।
0: वहां वो देश के विभाजन के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अकेले अनशन और पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्होंने 15 अगस्त के दिन कोई जश्न नहीं मनाया था, बल्कि 24 घंटे का उपवास रखा और मौन व्रत धारण किया।

तो दोस्तों, एक बड़ा भ्रम ये भी है कि 15 अगस्त 1947 की सुबह ही लाल किले पर तिरंगा फहरा दिया गया था। असलियत तो ये है कि 15 अगस्त को पंडित नेहरू ने दिल्ली में काउंसिल हाउस, संसद भवन और इंडिया गेट के पास झंडा फहराया था। लाल किले की प्राचीर से आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था।

15 अगस्त 1947 को भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के समय अपनाया गया था।

1947 के जश्न में झंडा वंदन के समय कई जगहों पर जनगण मन की जगह INA के तराना गानों और पारंपरिक धुनों का इस्तेमाल किया गया था। जिस सिर्फ रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा यानी रेडक्लिफ रेखा खींचने का काम सौंपा गया था, वो पेशे से एक वकील था और वो आज़ादी से कुछ ही हफ्ते पहले पहली बार भारत आया था।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज बात कर रहे हैं हम स्वतंत्रता दिवस की और कुछ ऐसे अनकहे पहलू, अनसुने गहरे राज जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। शायद आप इनकी जानकारी हो भी या ना भी हो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा यानी रेडक्लिफ रेखा खींचने का जो काम सौंपा गया था सिर्फ रेडक्लिफ को, वो पेशे से एक वकील था और आज़ादी से कुछ ही हफ्ते पहले पहली बार भारत आया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसे भारत की संस्कृति, भूगोल, जनसांख्यिकी या यहाँ के इतिहास का कोई अता पता था ही नहीं। उसने सिर्फ 5 हफ्तों के भीतर एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके भारत के 2 टुकड़े कर दिए। एक ऐसा इंसान जिसने कभी यहाँ की मिट्टी पर पैर तक नहीं रखा था, उसने करोड़ों लोगों की तकदीर और लकीरें तय कर दी थी।

दोस्तों एक बात और बताएं आपको, जब ये तय हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त को होगा तो भारतीय ज्योतिषों ने भी आपत्ति जता दी कि 15 अगस्त का दिन ज्योतिषी गणना के अनुसार शुभ नहीं है। तब मध्य मार्ग ये निकाला गया और ये तय किया गया कि अंग्रेजी तारीख बदलने के ठीक क्षण यानी कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे को अभिजीत मुहूर्त या फिर वृषभ लग्न में सत्ता उनसे ले ली जाएगी, ताकि ज्योतिषीय दृष्टि से भी एक नए राष्ट्र का उदय एक शुभ काल में माना जा सके।

जी, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। गीत सुना आपने 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी के उस दौर में हैं जहां जेब में पूरी दुनिया यानी कि स्मार्टफोन लेकर के घूमते हैं। और आपको बता दूं कि इस समय हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, और अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो हमसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, अब समय हो गया है, हम फोन पर भी आपसे बातचीत करेंगे। और आप ये बताएंगे कि आज आज़ादी का मायना आपके लिए क्या है, क्योंकि अब हम इसी विषय पर आगे आ रहे हैं। तो इंटरनेट की एक क्लिक पर आसमान आज हमारी मुट्ठी में है, लेकिन आज जब मैं और आप चैन की एक लंबी सांस लेने की कोशिश करते हैं तो खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या वाकई में हम आजाद हैं, या फिर आज आजादी के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। जरा सोचिए, 1947 में हमारे बुजुर्गों के लिए आजादी का मतलब क्या था? अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से मुक्ति पाना, खुली हवा में सांस लेना, अपना देश अपना संविधान। लेकिन आज साल 2026 में जब एक युवा सुबह उठता है तो क्या सोचता है, तो उसकी आजादी की परिभाषा आखिर क्या होती है? क्या वो सिर्फ एक नौकरी पाना चाहता है, या अपने मनपसंद सपनों की उड़ान भरना चाहता है, और एक हमारी आम गृहिणी जिसमें से कि मैं भी हूं, आप भी होंगे, एक किसान, एक आम नौकरी पेशा इंसान, वो किस तरह की आजादी की तलाश में है? महंगाई से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, या फिर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के तनाव से थोड़ी सी आजादी, यानी कि थोड़ी सी राहत? आखिर हमें चाहिए क्या? क्या वाकई में हम देश को सर्वोपरि रखते हैं? तो भाई, कान लगा करके बैठ जाइए। अब वैसे आप बड़ी देर से लगाए हुए हैं कान, हमें पता है आप बहुत सिंसियर श्रोता हैं हमारे, और जो फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम फ्लैश हो जाए और हम आपका नाम यहाँ पर ले सकें। आप मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आज फ़ोन नहीं करना चाहते हैं, कहीं बिजी हैं, कहीं आप प्रोग्राम देखने चले गए शायद, तो जा रहे होंगे, मतलब रास्ते में तो सुन तो रहे ही होंगे। हमें जो सिंसियर श्रोता होते हैं ना, वो रेडियो अपने साथ साथ में लेकर के चलते हैं, वो सुनते ही रहते हैं। तो 7018117091 हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है भाई, हम आपकी फ़ोन कॉल्स का वेट कर रहे हैं। बड़ी डेस्परेटली इंतज़ार है आप लोगों से बात करने का भी, क्योंकि हम तो अपनी बातें कह करके यहाँ से चले ही जाएंगे, लेकिन फिर आपको शायद लगेगा कि अरे भाई, हम भी अपने स्कूल डेज के जो स्वतंत्रता संग्राम मतलब के दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, शायद हम वही बता देते कितने अच्छे थे ना वो दिन, कि जब हमें ऐसा लगता था कि आज, वैसे तो स्कूल से छुट्टी होती थी लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे ना, उन बच्चों के लिए नहीं होती थी छुट्टी। और ऐसा भी नहीं होता था जैसे आज हुआ है कि आज स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो खुले हुए हैं, पहले बंद रहते थे लेकिन आज खुले हैं, और आज की जो छुट्टी है वो सोमवार को डिक्लेयर की गई है, यानी मंडे को आपको छुट्टी रहेगी। और बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे बच्चे हाथों में झंडे लिए हुए अपने अपने स्कूलों की तरफ जा रहे थे। कुछ NCC NSS की ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में, और वो जा रहे थे शायद पुलिस ग्राउंड की तरफ मार्च पास के लिए। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि कान लगा करके अब से आखिर तक बैठिएगा, और रेडियो का जो वॉल्यूम है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अगले कुछ मिनटों में हम इसी विषय पर आपसे बात करने वाले हैं कि आज का युवा, हमारी आम जनता और हम सब असल में
किस तरह की आज़ादी चाहते हैं। और हाँ, बीच बीच में आपको पसंदीदा आपके गानों की गूंज भी सुनाते रहेंगे। वैसे तो आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने पनकी के साथ। तो बस जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा आज आखिर तक स्टूडियो में मेरे साथ। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

जी हाँ, ये संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भाई हम जो हैं हिंदुस्तानी भारतवासी, हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले हैं और कोशिश भी बिल्कुल मत कीजिएगा हमको तोड़ने की।

दोस्तों, क्या चाहता है हमारा आज का युवा? डॉक्टर, इंजीनियर बनने के पुराने दबाव से दूर युवा अब कंटेंट क्रिएटर, गेम डेवलपर, स्टार्टअप फाउंडर या फिर अपनी हॉबी को करियर बनाने की आज़ादी चाहते हैं, या फिर सोशल मीडिया के दौर में युवा बिना किसी डर या जज होने के डर से अपने जो विचार हैं वो खुल करके दुनिया के सामने रखना चाहते हैं।

0: जी श्रोताओ, हमारे साथ फोन लाइन पर एक श्रोता हैं, करते हैं उनसे अभी थोड़ी देर में बात। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: हेलो जी।
1: हेलो नमस्कार। प्रणाम प्रणाम।
0: आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है।
1: हेलो नमस्कार,
0: आप सुन पा रहे हैं हमें
1: जी? हेलो,
0: मुझे लगता है फोन लाइन कट गई है, तो दोबारा से आप कोशिश कीजिएगा, हम आपको लाइन पर लेंगे।

0: जी हमने कोशिश की कि हम अपने श्रोता को कॉल पर ले पाएं, लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। पता नहीं आज शायद हो सकता है कि मौसम के चलते भी नेटवर्क कुछ इशू आ रहा है, वरना हमारी फ़ोन कॉल्स तो यहाँ से सही सलामत ही आप लोगों तक पहुँचती हैं। फिर भी जो श्रोता हैं वो कोशिश कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में बात हो रही है आज आज़ादी की, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की। श्रोता एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हेलो हेलो, आपका आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है जी।
1: मेरे पास तो क्लियर है जी आवाज़ पूरी।
0: हाँ जी, कुछ हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हेलो हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: आप जो भी हैं आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, बहुत ही कम, हमें तो बहुत कम सुनाई दे रही है स्टूडियो से।
1: पूरी आवाज़ है।
0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: जी जी।
0: हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए।
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए जी, कोशिश करते हैं आपकी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। जी नमस्कार।
1: जी जी जी जी नमस्कार जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं
1: आप? अनिल, मेरा परिचय अनिल है।
0: अच्छा जी, अनिल जी बोल रहे हैं।
1: जी जी जी जी।
0: अच्छा अनिल जी जी बताइए।
1: पहले तो आप सबको गुंजन, आप सबको गुंजन परिवार को और हिमाचल वासियों को सबको ही मतलब स्वतंत्रता दिवस के आपको शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी शुभकामनाएं, पूरे हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं।
1: जी आपको नहीं बोलूंगा कि मैडम हमें आजादी तो मिल गई है
0: जी,
1: और मैं समझता हूँ कि अधूरी आजादी का कोई मतलब तात्पर्य नहीं है।
0: मतलब आपको कैसी आजादी चाहिए?
1: मैं अभी इस चीज को थोड़ा सा अच्छा मैं इसका मतलब विवरण दूंगा आपको।
0: हाँ जी।
1: कि प्रजा भी अपनी हो और तंत्र भी अपना हो।
0: प्रजा भी अपनी यहाँ हो, तंत्र भी अपना हो।
1: जी जी जी। प्रजा भी प्रजा मतलब लोकतंत्र, लोग भी अपने हैं, तंत्र भी अपना है
0: जी।
1: पर यहाँ क्या कि लोग अपने हैं पर उनका बुरा हमारा तंत्र हमारा नहीं है।
0: तंत्र हमारा नहीं है जी। थोड़ा सा जी, जी, जी। इसको एलाबोरेट मतलब थोड़ा विस्तारित करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल करूँगा
0: जी।
1: देखो तंत्र अपना तब होगा जब मतलब सरकार से ढंग देखा मतलब अपने अनुसार काम करे, हर आदमी के सुविधा सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखे, तभी हमें पूरी प्रोस्पेरिटी आत्मसम्पन्नता मिल सकती है।
0: अच्छा
1: जी, जी। देखिए जब जब हम आजाद हुए तो आजाद होने का मतलब ये था कि सबसे बड़ी मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा जिस प्रकार का मानिए कि चाइना चीन जो था हमसे एक वर्ष बाद में आजाद हुआ।
0: अच्छा।
1: और आज हमसे वो 10 गुना आगे निकल चुका है। इसका रीजन क्या है? इसका कोई कारण भी होगा। उसका कारण ये कि उनका लोग भी अपने हैं और तंत्र भी अपना है। उन्होंने पूरे जो नियम थे जो पुराने गुलामी वाले वो सारे ही हटा दिए। आज हम भी आज हम गुलामी वाले उन्हीं नियमों पर जी रहे हैं। आज भी हम
0: जी
1: आज भी हमारे देश में नियम वही चल रहे हैं। देखिए नियम मतलब एक तो ये करप्शन भारत में ज्यादा है, करप्शन मुक्त भारत नहीं है आज भी। नीट एंड क्लीन भारत कहीं भी नहीं आज ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: गरीब मुक्त भारत आज भी नहीं है
0: जी।
1: स्वस्थ प्रशासन आज भी कहीं नहीं है। अतक मुक्त भारत आज भी नहीं है। अगर अतक मुक्त भारत है तो मुझे बताइए, हर आदमी भय में जी रहा है, हर आदमी दहशत में जी रहा है, मेरा पता नहीं अगले मोड में क्या हो जाएगा है? करने को काम मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, आदमी की लाइफ जो ओरिएंटेड नहीं है
0: जी।
1: तो ये कहाँ की आजादी है? इस आजादी का मतलब कंप्लीट आजादी नहीं मिली, जबकि जो लोग कॉमनवेल्थ के अंदर जो आते हैं आज भी कंट्री, वो लोग उन लोगों ने गुलामी की पूरी ही जो निशानियां उन निशानियों को हटा दिया है ना। आज भी उन लोगों को जो आने वाली जनरेशन है उनको ये नहीं पता जो कि हमारे देश में गुलामी थी, बट आज भी हमने हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को बच्चों को पता कि हम गुलाम थे। गुलामी का तो ऐसा सा गुलामी का तो गुलामी तो शब्द ही पूरा है, गुलामी का शब्द तब तब तो दिमाग से नहीं हटेगी, जहन से तब तब तक नहीं हटेगा जब तक हमारे दिमाग से चीज जाएगी नहीं। तभी तो मतलब हम बोलते हैं कि लोग भी अपने हो तंत्र भी अपना हो।
0: मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अभी भी आजाद देश के गुलाम हैं?
1: नहीं नहीं कभी नहीं हो सकते
0: जी।
1: देखो ना आज भी कोई आदमी अगर अपने इलाज करवाने जाता है हॉस्पिटल में अस्पताल में तो उसको कम्प्लीट सही ढंग से मतलब उसको चिकित्सक नहीं मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती है तो कैसे आजादी होगी? हर आदमी परेशान है कहीं ना कहीं लाइनों में लगा हुआ।
0: जी हाँ बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए और आप क्या कहना चाहते हैं आपके भाव भी हम बिल्कुल समझ रहे हैं, सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। आपने अपनी बात रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से जनता तक रखी है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो आप सब आपसे रिलेट कर ही रही होगी क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि सबके अपने अपने विचार हैं तो आपने अपने विचार रखे, हमें अच्छा लगा। और स्वतंत्रता दिवस को खूब खुशी से मनाइए और अगर आपके आसपास में कुछ बच्चे हैं तो उन्हें प्रेरित कीजिए कि कम से कम वो जाएं पुलिस ग्राउंड जाएं या फिर डीसी ऑफिस जाएं। अगर बारिश हो रही है हमें तो बताइए बाहर वहां पर कैसा मौसम है, आप बताइए थोड़ा सा मौसम कैसा है ऊपर धर्मशाला में।
1: हाँ अभी यहाँ तो बारिश लगी हुई है।
0: बारिश लगी है तो हम सारी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने पुलिस ग्राउंड जाना चाहते हैं तो आप डीसी ऑफिस चले जाइएगा क्योंकि बारिश में डीसी ऑफिस में परेड होगी।
1: हाँ
0: जी
1: एक छोटी छोटी बात आप और बोलूंगा आपके।
0: हाँ जी
1: छोटी बात और बोलूंगा
0: जी जल्दी।
1: कि हम एक दिन तो चलो माना कि हम आजादी का आजाद इस स्वतंत्रता दिवस मना देंगे
0: जी,
1: पर अगले दिन हमारा फिर वही वही हाल है
0: जी।
1: जैसे
0: बिल्कुल इस बात पे भी आएंगे हम, धीरे धीरे सब बातें कवर कर रहे हैं लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा समय हमें भी मिल जाए ताकि हम ये सारी बातें कार्यक्रम में ले सके। अगर आज नहीं ले पाए तो फिर किसी और दिन कोई और कार्यक्रम को करूंगी और उस पर बातचीत करूंगी।
1: जी
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद थैंक यू लॉट ऑफ थैंक यू।
0: ओके ओके तो अनिल बलौरिया जी से आप लोगों ने रिलेट किया ही होगा और यहाँ पर एक मैसेज आया है हमें फेसबुक लाइव पर, पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं, थोड़ा सा दूर है। श्रोता लिखती हैं कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद जी जय हिंद जी। आज तरह तरह के भाव जो हैं उमड़ घुमड़ करके श्रोताओं के आ रहे हैं, निकल रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं और इन्हीं भावों को लेकर के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए स्वतंत्रता दिवस या फिर 26 जनवरी हम साल में एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और क्योंकि इन्हीं दिवसों के कारण, इन्हीं स्वतंत्रता संग्रामों के कारण और जो देश के शहीद हुए हैं देश में जवान, उन सभी के कारण, चाहे वो जवान थे या आम जनता थी, उन सभी के कारण आज हम चाहे जिस भी तरह से आज़ादी को सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं ना, आज़ाद तो हम हैं ही ना। अब ये दूसरी बात है कि हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं वो अपनी अपनी परिभाषा है तो, लेकिन आज का दिवस तो हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए। चलिए चलते हैं फिर हम भी पुलिस ग्राउंड, बस इस कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद मैं भी वहीं पहुँचने वाली हूँ, आप भी चलिए। लेकिन फिलहाल जब तक रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ हैं आप सुनते रहिए हमें गूंज अपने पन की। और श्रोताओ स्वतंत्रता दिवस के दिन और 26 जनवरी के दिन होता क्या है? सबसे प्यारा हमारा तिरंगा फहराया जाता है तो आइए यहां भी हम फहरा लेते हैं तिरंगा।

और मुझे पूरी उम्मीद है श्रोताओं की बहुत दिनों से आप ये गीत सुन ही रहे हैं किसी न किसी बहाने से। तो हम बात कर रहे हैं आज़ादी की। सोशल मीडिया के दौर में युवा बिना किसी डर के, ये बात मैंने आपसे वैसे कह दी है, अपनी मर्जी से जीने, शादी या रिलेशनशिप के फैसले खुद लेने और अपनी लाइफस्टाइल चुनने की आज़ादी भी चाहता है युवा। कम उम्र में अपने पैरों पर खड़े होने और पैसे के मामले में किसी पर निर्भर ना रहने की चाह भी होती है उसके मन में। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के तनाव, खर्चों के तनाव से मुक्ति चाहता है आम इंसान। हर नागरिक, विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग, बिना किसी डर के रात बिरात घर से बाहर निकल सकें, ये चाहते हैं। ऐसी आज़ादी चाहते हैं, ऐसा सुरक्षित माहौल चाहते हैं। हर काम आसानी से बिना रिश्वत दिए और बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे ही हो जाएं, भ्रष्टाचार और सरकारी कागजी कार्रवाइयों से आज़ादी चाहते हैं लोग।

तो दोस्तों, हम प्रदूषण, जहरीली हवा और गंदे पानी से आज़ादी चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रह सके। 1947 में आज़ादी का मतलब विदेशी हुकूमत से मुक्ति था, लेकिन आज आज़ादी के मायने बदल चुके हैं। हम आज मोबाइल और स्क्रीन के गुलाम हो गए हैं। इस डिजिटल लत और हमेशा ऑनलाइन रहने के दबाव से भी तो आज़ादी होनी चाहिए। इंटरनेट पर फैली नफरत, झूठी खबरों और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से दिमागी शांति की आज़ादी चाहिए हम सबको।

दूसरों की परफेक्ट सोशल मीडिया लाइफ देख करके खुद को कमतर आंकने की सोच से भी आज़ादी चाहिए। हम तुलना न करें बिल्कुल भी किसी के साथ। और ये बात बहुत ज़रूरी है, बीमारियों और भागदौड़ भरी ज़िंदगी के मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से आज़ादी चाहिए।

0: नशाद ने संगीतबद्ध किया, मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जादुई आवाज़ दी। महज एक पुराना गीत नहीं है ये, आज के संदर्भ में भी उतना ही जिंदा और गहरा संदेश देता है।
1: खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, आजादी को हम
0: आज़ादी सिर्फ एक बार मिल जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसे हर रोज़ संभाल करके रखना पड़ता है। 1960 के दशक में जब ये गाना आया था, तब देश के सामने सरहदों और बाहरी ताकतों की सुरक्षा का सवाल मुख्य था। आज 2026 में खतरे बदल चुके हैं। आज हमारी आज़ादी पर डिजिटल गुलामी, फेक न्यूज़, मानसिक तनाव और वैचारिक असहिष्णुता का पहरा है। ये गाना हमें याद दिलाता है, कि हमें इन अंदरूनी और आधुनिक गुलामियों से भी अपनी आज़ादी बचानी है। इस गाने की पंक्तियां सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं है। आज के युवा और आम नागरिक जब भ्रष्टाचार, मानसिक दबाव या अन्याय के आगे झुकने से मना कर देते हैं, तो यही भावना तो काम करती है। ये गीत उस अटूट संकल्प का प्रतीक है।

स्वतंत्रता दिवस पर जब आप रेडियो से ये गीत सुनते हैं तो ये बुजुर्गों के संघर्ष और आज के युवाओं की आकांक्षाओं को भी जोड़ता है। पुराने गीत की मिठास और रफी साहब की आवाज हर उम्र के श्रोता के दिल में देशभक्ति और आत्मसम्मान स्वतः ही जगा देती है।

भले ही ये गीत दशकों पुराना हो, लेकिन इसकी एक एक लाइन आज के दौर में हमारी डिजिटल और मानसिक बहसों पर बिल्कुल सटीक बैठती है।

0: तो दोस्तों आज नागरिक राष्ट्रगान गाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है। याद है आपको वो दिन जब हम भी बच्चे थे? जी, वो गीत नहीं सुना रही हूँ आपको, आपको याद दिलवा रही हूँ कि जब हम भी स्कूल कॉलेजेस के कार्यक्रमों में से निकल मतलब रिहर्सल करके भाग लेने जाते थे। कभी हम शहीद स्मारक, कभी कहीं और, जहाँ पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो अगर आज आपके बच्चे इनमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो बिल्कुल भी उन्हें रोकिएगा टोकिएगा नहीं। ये तो बहुत गर्व की बात है कि वो खुद से इनिशिएटिव लेकर के इन कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं।
1: आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है, बस इतना ही कहना।

भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां सैकड़ों भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। 15 अगस्त एक ऐसा राष्ट्रीय त्यौहार है जो जाति, मजहब और क्षेत्र की दीवारों को तोड़ करके पूरे देश को एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोता है। इस दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश तिरंगे के नीचे एकजुट होकर के अपनी भारतीयता का जश्न मनाता है। ये दिन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कई गुमनाम, चंद्रशेखर आजाद और लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान को याद करने का अवसर है।

0: ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसकी कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से चुकाई है।
1: जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो।
0: लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं, और उससे एक रात्रि पहले हमारे राष्ट्रपति जी भी देश को पूर्व संध्या पर संबोधित करते हैं, तो वो केवल पुरानी उपलब्धियों का जश्न नहीं होता बल्कि भविष्य का रोड मैप भी होता है।
2: अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है।
0: ये दिन हमें आर्थिक, तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक पटल पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ये दिन देश के हर नागरिक को न केवल संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का एहसास करवाता है बल्कि राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों और अनुशासन की भी याद दिलाता है। ये एक नागरिक के तौर पर देश की प्रगति में अपना योगदान देने का संकल्प दिवस भी है।

0: भीगा भीगा पाए।
1: बस भावुक हो गए हम। ये प्रसिद्ध गीत लक्ष्य नामक बॉलीवुड फिल्म से है, जिसका निर्देशन फरहान अख्तर ने किया था। इस प्रेरणादायी गाने के बोल प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे और इसका संगीत शंकर एहसान लॉय की टिकड़ी ने तैयार किया। गीत केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि किस प्रकार एक सैनिक विषम परिस्थितियों, पहाड़ की ठंड और अपनों से दूर रहकर भी अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिस प्रकार सरहद पर सैनिक एकजुट होकर के हर खतरे का सामना करते हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र के रूप में हमें भी आपसी मतभेद भुला करके देश की प्रगति और एकता के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए।

तो श्रोताओं, आप स्वतंत्रता दिवस पर सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और बस अब 5 मिनट हमारे पास बचे हैं और इस गीत के साथ मैं भी लूंगी आपसे अलविदा। और इसी उम्मीद से कि हमारा झंडा हमेशा ही ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहा है, रहेगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ बातें और भी बता देना चाहती हूं कि आज दक्षिण और उत्तर कोरिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कांगो, बहरीन, जी हां, ये भी अपना स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। तो दोस्तों, ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: अकाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
14: वही असली तरक्की।
13: एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त

गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई?
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते हैं।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला ना है टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ।

0: पहले
1: पाकिस्तान को सूचित कर दें, भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद।

0: राष्ट्र आज सीमा स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉइसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से

मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 अब लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया है, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाएंगे टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
14: वही असली तरक्की।
13: एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुलशन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों 91.1 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंचन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।

0: उसका।
1: पापा पापा दूध उबल रही है।
2: उबल रहा है। रहा।
1: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
3: चटाई।
1: ओहो दादू इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
4: बेटा खाया नहीं खाई।
1: ओके ओके मम्मी लाइट चला गया।
5: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
2: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
1: वो तो आ गई।
5: आ गई नहीं लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया है, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
5: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
6: मामा, नो शेयरिंग।
5: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
6: कौन था?
5: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
6: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
5: स्मार्ट गर्ल।
6: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
5: याद है ना, नो शेयरिंग।
6: मामा,
7: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
8: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
9: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाएंगे टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
12: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
11: क्यों?
12: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
15: मैं तो बुरी।

अनवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों मैं शशि हाजिर हुई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ता जरूर माटी दी महक कार्यक्रम दे सब हर्च तोहा सारे दई शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कने यहाँ जिड़े से अपने कार्यक्रम दी शुरुआत करी थी है कने आज जिड़ा खास दिन बना देन या तो भी आज कने दिने जो जरूर जिड़ा खास तौर पर बना दे उन्हें न 15 अगस्त दी अगर हाँ गल करिए स्वतंत्रता दिवस जिड़े से आज हाँ बना देन। पहले तो तुम सारे जो ही गुंजन परिवार दी तरफ ते ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस दी। इसी कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने यहाँ कन्ने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। गलबात जिड़े से यहाँ जारी रखनी है कन्ने जिड़ा तो दियाँ प्यारियाँ प्यारियाँ फरमाइशा न सभी जरूर तुह तक पहुँचानिया न कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने यहाँ कन्ने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते जिड़ा हाँ दा नंबर है से तो हाँ पहले नोट करा क्योंकि नंबर तो हाँ तक पूछेगा ताई तो तुहाँ इस नंबर पर कॉल कर सकते या टेक्स्ट मैसेज कर सकते या व्हाट्सएप मैसेज जिड़े से जरूर कर सकते। नंबर है 701-811-7091 ते नंबर तो हाँ तक पहुँचाई थे कने तो हाँ सारे भी नंबर जिड़े से नोट करी लिया उन्हें नंबर जरूर नोट करी लिया। इसी शुरुआत कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम का जिड़ा आगाज है से जरूर कर देन इस गीत कन्ने क्योंकि गीत संगीत जिड़े से आंदे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा कर दे तो जरूर इसी गीत कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम का जिड़ा आगाज है से कर देना।

0: श्रोता तो सारे सुना ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत। इसी शुरुआत करने आहंदे जेड़ा पहले श्रोता हां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: मैडम जी, जय हिंद
0: जी। जय हिंद जी, नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी, आज 15 अगस्त है, मैं क्या जय हिंद करिए मैडम आज।
0: जी जरूर जी जी, तो हाँ जो स्वतंत्रता दिवस दिया ढेर सारी शुभकामनाएं जी।
1: आपको भी मैडम जी।
0: जी तो हाँ अपना जेड़ा परिचय है से जरूर दे दिया जी, कुथु दे रहने वाले ने कने तो हाँ दा नाम
1: जी। मेरा मेरा नाम है लवलीन शर्मा
0: जी,
1: मैं नहर चौक मंडी हिमाचल प्रदेश रहने वाला जी।
0: जी मंडी दे रहने वाले ने।
1: हाँ जी
0: जी, तो क्या हाल चाल है मंडी वाले दे, मौसम कदी है उस साइड?
1: मैडम जी मौसम तो आज तो थोड़ा सवेरे बारिश हुई है, 3 दिन बाद।
0: जी जी,
1: 3 दिन तक कड़ाके की धूप लगी थी
0: जी। अच्छा, 3 दिन जड़े से धूप भी थी?
1: हाँ जी, धूप थी, बहुत तेज धूप थी।
0: जी जी जी, तो आज का जेड़ा दिन है से किस तरीके ने तुहां सेलिब्रेट करा दे?
1: अरे आज का दिन तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है
0: जी जी,
1: 15 अगस्त बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज सवेरे पंचायती गए थे, झंडा फहराया पंचायती जाके
0: जी। अच्छा जी, तो युवा वास्ते कने बच्चों वास्ते क्या संदेश तुहां देना चाहेंगे तिना जी?
1: 15 अगस्त का तो मैं जी किया दे वो है मतलब कि भाई नशे से दूर रहो, आज का युवा ये बड़ी बड़ी गल है
0: जी। सबसे बड़ी गल जड़े से यही है कि नशा जड़े से सबसे बुरी लत है ना जी।
1: हाँ जी, ये तो देशो खोखला करे करा जी।
0: जी जी जी जी, तो लवली जी आज तो हाँ कुंदिया जिड़ा गीत है से सुनने है जी।
1: मैम जी तो पहाड़ी गाने सुनाने पोए आज तो, यहाँ देशभक्ति गाने तो सारे हिंदी है ये।
0: जी सारे हिंदी है
1: ना। आप तो बॉर्डर मूवी वाला गाना सुनना था, पर चलो जेड़ा तो सुना देना तेड़ा ठीक है।
0: जी जी जरूर जी, पहाड़ी कार्यक्रम में तो पहाड़ी गीत चलना था बड़ा अच्छा लगता ना जी।
1: यहाँ जी ऐसा नहीं है मैम जी, कोई बढ़िया जी गाना सुना दो, फौजिया मजाना मारा।
0: जी जी हाँ जी,
1: ये गाना सुना दो
0: जी, ये गाना भी बड़ा प्यारा है ना जी।
1: हाँ जी ये जो सुना
0: जी, जी जरूर जी, तो वहाँ तक ये गीत फरमाइश पहुँचा दें जी, चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा।

0: जी,
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कन्ने आज का जेड़ा कार्यक्रम है से जरूर खास है। तो सारे भी इस खास कार्यक्रम दे सफर शाह कन्ने जुड़ी सकते कन्ने यहाँ कन्ने गल बात जेड़े से जरूर करी सकते। 15 अगस्त 2026 दी यहाँ गल करिए तो आज का जेड़ा दिन ने से हर तरफ रौनक आला है या हर तरफ जिड़े से खुशी आला माहौल है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जिड़ा हाँ जो आज़ादी जिड़े से मिली थी आज कना जिड़ा दिन ने। तो यही है कि आज कना दिन ठीक है आज कना दिन हाँ सेलिब्रेट करा देन हर दिन हाँ कुछ न कुछ जिड़े से सेलिब्रेट कर देन पर हाँ क्या सोच विचार अपने अंदर रख देन या युवा पीढ़ी है या बच्चे न युवा पीढ़ी जो हमेशा हाँ यही बोलना चाहेंगे कि जेड़ा नशा है नशे ते हमेशा दूर रहा क्योंकि जेड़ा एक श्रोता जुड़े थे सभी यही विचार जेड़ा से तीना रखे थे कि नशा जेड़ा से सबसे बुरी लत है। नशा जेड़ा चाहे से परिवार है चाहे यहाँ का स्वास्थ्य है चाहे यहाँ की शिक्षा है चाहे यहाँ सफलता दी और बड़ा देन सब कुछ जड़े से यहाँ का बर्बाद करी है। कने अगर तो हाँ नशे ते दूर रहते न कने अपनी फैमिली के बारे सोच देन अगर तो हाँ नशा करना है तो पढ़ाई का नशा करा अपने जेड़ा सपने न तिना का नशा करा क्योंकि सफलता पाने वास्ते भी यहाँ जो मेहनत जेड़ा से जरूर करना पौंदी अगर हाँ मेहनत कर देन ताई यहाँ अपने सपनिया जो साकार करी पाते न तो जरूर सपनिया जो साकार करा कने इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया। इंतजार तो हाँ जो भी रहेंदे कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तो हाँ सारे इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न इसी सफर जो हाँ आगे बढ़ाना है कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलना है सुन दे निसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारी भी इंजॉय करा।

दर्शकों तुम सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है रीना जी, तो जरूर रीना जी तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने फ्री ते अपनी गलबात पर पहुंची होने कने तो हाँ भी जरूर मेरी गलबात कने जुड़ी होने न कने जिड़ा गीत संगीत है सभी सुना दौने न। दर्शो तो एकता जी भारत दी जिड़ा शक्ति है से हाँ बोली सकते क्योंकि भारत जिड़े से ऐसा देश है यहाँ ये बोली सकते कि यहाँ दी जिड़ा अलग अलग भाषाएं हैं संस्कृतियाँ हैं परंपराएं खान पान जिड़े से अलग अलग है पर अहाँ दी जिड़ा पहचान है ना से एकता ची है क्योंकि अहाँ कोई भी काम करते हैं ना अगर अहाँ मिली जुली करी तिस कमे जो कर दे ना तो तिस कमे करने का सबसे अलग तरीका होंदा या ये बोली सकते कि तिस कमे करने का अलग ही अंदाज है चाहे अहाँ फैमिली दे गाल करिए पर अजकने दौर दी अहाँ गाल करिए ता ये जिड़ा चीज़ है से बिल्कुल बड़ी कम दिखने जो मिला थी प्यार भावना या एक दुए अंदर एकता या मिली जुली करी जिड़ा काम करने है से चीज़ बड़ी कम है। पर पहले दी अगर अहाँ गाल करिए या थोड़ा दे अहाँ पीछे मुड़ी करी दिखते न या जिड़ा अहाँ दे दादा दादी हैं या जिड़ा बुजुर्ग हैं तिना ते अहाँ सुनते न तो कुथी ना कुथी से अपने जिड़ा काम मन से ज़रूर मिली जुली करी करते थे अगर चाहे से खेती बाड़ी का काम है चाहे घरे का काम है चाहे कोई भी फंक्शन है चाहे यहाँ दी संस्कृति है चाहे से यहाँ दे परंपराएं न चाहे से यहाँ दा खान पान है अहाँ कोई भी काम करते न तो ज़रूर अहाँ इस कमे जो मिली जुली करी करते न तो ज़रूर तो हाँ भी एक जड़ा प्रण है से लेना है कि अहाँ कुछ दी भी कुछ दा भी मान सम्मान करना है तो ज़रूर करना चाहे बड़े न चाहे छोटे न कोई भी है मान सम्मान करना जिड़ा है सियाह का कर्तव्य है पर सियाह पर निर्भर करता है कि यहाँ किस प्रकार करते हैं कने आज यहाँ जिड़ा स्वतंत्रता दिवस जिड़े से बना देन कने स्वतंत्रता दिवस अहाँ जो हमेशा ये सिखा दे कि एकता ची ही विविधता है अहाँ अगर मिली जुली के रहेंगे ताई यहाँ अपने समाज जो बेहतर बनाई सकते ताई यहाँ अपने देश जो बेहतर बनाई सकते ताई यहाँ जेड़ा युवा पीढ़ी है से सफलता दी ओर बढ़ी सकती क्योंकि सफलता दी ओर बढ़ने वास्ते हमेशा हाँ मेहनत भी करते न कने यहाँ मेहनत करी करी तिना सपने जो साकार भी ज़रूर करते न तो सपने जो भी साकार करने कने तो हाँ इस कार्यक्रम के सफर च भी जुड़ने फ्री ते नंबर तुहां तक पहुँचाई देन क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज जड़े से ज़रूर करी सकते नंबर है 7081117091 ते नंबर तुहां तक पहुँचाई ते कने तुहां सारे भी इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज जिड़ा से ज़रूर करा कने इस 15 अगस्त दा जिड़ा स्वतंत्रता दिवस है सभी ज़रूर स्पेशल तौर पर बना क्योंकि अहाँ दा जिड़ा वातावरण है इसी वास्ते भी अहाँ जो थोड़ा दिया एक जिड़ी सोच है से रखनी है कि अहाँ दा जिड़ा वातावरण है सभी साफ सुथरा होना ज़रूरी है पर से मुझे कुछ ही नज़र नहीं होता क्योंकि हाँ अपने आसपास भी दिखते न तो कुथी ना कुथी जिड़ा अहाँ घरे दी साफ सफाई तो करा दे न पर कुथी ना कुथी अहाँ जिड़ा घरे दी सफाई करा दे सही जिड़ा कूड़ा कचरा है से अहाँ चाहे अपने मोहल्ले च फेंका दे चाहे से अहाँ नदी नाले च फेंका दे या कुथी भी जिड़े से तो हाँ अपने आस पास दिखते ही है न तो ज़रूर इदा भी ध्यान रखना है कने पेड़ लगाना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ जड़े से यहाँ जो हवा दिंदा है ऑक्सीजन दिंदा है तो पेड़ लगाना भी ज़रूरी है तो ज़रूर ये ऊपर भी यहाँ गलबात करनी है पर अपनी गलबात जो इतों ही रोक देना कने तो हम जो ले करी चल देना अगली फरमाइश दी ओर।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे फरमाइश ये फरमाइश अह तक पहुँची है मंडी ते कने तिना दा नाम है लवली जी तो जरूर तिना तक अह ये गीत फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की इसी कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कने जुड़ी सकते कने अह कने गलबात जड़े से जरूर करी सकते दर्शकों गलबात जड़े से हाँ करा देना स्वतंत्रता दिवस के बारे च आज जड़ा दिन है से कुछ बेहतर खास है हाँ वास्ते तो खास किस तरीके ने हाँ बना दे से तो हाँ सारे जो ही पता है कने खास बनाना कितना ज़्यादा हाँ वास्ते जरूरी है। अगले जड़ा श्रोता ने से जरूर हाँ कने जुड़ चुके हो न कर दिन तिना कने गलबात। हेलो
1: देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान का है।
0: जी
1: जय हिंद।
0: जी जय हिंद जी। स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: धन्यवाद जी। वो ठीक ठाक
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ अपना परिचय भी दे दिया जी।
1: मैं इंदु सी दुवाड़ी थे
0: जी। तो इंदु जी आज तो हाँ क्या काम कार छेड़िया क्या करा दिया आज तो हाँ?
1: बस जी थोड़े प्रोग्राम में सुना थे कन्ने कन्ने घरे दे काम लग गया आज मले एक दिन हाँ देशभक्ति दे गाने सुनने बजे है ना आज।
0: जी अच्छा आज जेड़ा से देश भक्ति दे जेड़ा रंग चहां रंगी हो ना जी।
1: बिल्कुल क्योंकि पूरा दिन आज मतलब ये तो सुन दे पर आज पूरा दिन लगता था मजा आंदा ना अपना
0: जी ती तो सुनने दा अलग ही अंदाज होंदा ना
1: जी। बिल्कुल
0: जी जी। ता इंदु जी तो है क्या लगदा अहां युवा वास्ते क्या जेड़ा संदेश है या बच्चे वास्ते क्या संदेश तुहां देना चाहेंगे कि क्योंकि युवा दी गल करिए तो कुथी ना कुथी अहां जो हर दिन कोई ना कोई न्यूज सुनने जो मिलती है।
1: बिल्कुल जी
0: जी ता तुहां भी सुनते हो जी।
1: हां जी बिल्कुल अहां ते युवा ते मैं ते ही बोल दी कि दिखा एक हां आजादी तो मिली हो लेकिन जड़ियां कुड़ियां न जातर कुड़ियां बेचारी कुथी भी सेफ नहीं ना
0: जी जी
1: है ना क्योंकि इन्हें क्या दी आजादी अगर मतलब कलिया कुछ जा नहीं सकदियां अगर छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ छड़ी नहीं सका दे जड़िया आए दिन न्यूज आंदियां हां ते हिसाब दे गल करई बड़ा काम खराब है। इकने मुझे तो लगता है जड़ा भी है ज्यादातर फोन की मेहरबानी है कहीं दूजा है कि अहा कुड़िये तो बड़ी मतलब कर दे ना कुड़िये हर जगह रोक टोक कर दे लेकिन अगर बच्चे अपने मुंडवे बड़ी सही संस्कार दे ना शुरू ते हाड़े बच्चे जड़े ने मतलब ए दे केस नहीं होने कहना हाड़े बच्चे जड़े ने संस्कार ही बनने। हां जी तो मैं तो ही बोलती कि ज्यादातर हां जो पेरेंट्स जो है कि अपने मुंडू में ज्यादा समझाना चाहिए क्योंकि एक तो नशे की तरफ ज्यादा चाह कुड़िया चाह मुंडू ना
0: जी जी
1: है ना एक तो नशे की तरफ। हाँ जी
0: जी जी बोला

0: जियां के नशे दी तरफ जा रहे इत्थे भी गलत भेजे उन्होंने फ्रेंडली
1: जी
0: रिहा करना, उन्हें शुरू ते ही उस मतलब उन्हें अच्छे बुरे दा नॉलेज होना चाहिए।
1: जी जी ए जी इंदु जी, ये तो हाँ जेड़ा गल बोली ये सबसे अच्छी गल बोली कि जलू बच्चा छोटा है उस जो अच्छे बुरे दा ज्ञान जेड़ा है से जरूर दिया,
0: जी
1: क्योंकि
0: क्योंकि बोलते हैं
1: पेरेंट्स
0: ना
1: जी जी
0: बोला तो मैं
1: जी बोला जी
0: बोली जी कि छोटे बच्चे ना जो छोटे
1: जी
0: बच्चे हाँ ABC सिखाते हैं ना जी हाँ जो
1: जी
0: सिखाई हाड़े पेरेंट टीचर या
1: जी
0: पेरेंट्स का
1: जी
0: दस है जी हमेशा लास्ट तक खंजो याद रही जल तक हर
1: जी
0: दिमाग काम करते ना तल तक खंजो याद रही है चीज
1: जी
0: तो यही अगर छोटे होंगे जो चीज हाँ सिखाली होंगी बच्चे अच्छा सिखाया होगा तो फिर अच्छा भी होना तक पूरी उम्र याद रहा।
1: जी जी जी कने अहाँ अगर अपनी तरफ से बच्चे जो अच्छे संस्कार दें ना तो बच्चे भी उस चीज़ जो कैच कर दें ना जी,
0: जी बिल्कुल
1: पर से निर्भर अहाँ पर कर दे, पेरेंट्स पर कर दे कि है किस प्रकार अपने बच्चे जो अच्छे संस्कार दे देना या पॉजिटिव विचार तिना तक पहुंचा देना कि नकारात्मक विचार तिना तक पहुंचा देना, क्योंकि आज के दौर दी गल करी तो हर जगह हाँ कोई ना कोई न्यूज़ सुन दे ना, कने तिना न्यूज़ सुनी करी थोड़ा दिया दिल जड़े से उदास दे हो जाता है ना जी
0: जी आज मैंने एक न्यूज देखी
1: जी
0: फेसबुक पर मैं दिख
1: जी
0: रही फोन नहीं है तो बीच में
1: जी
0: क्या दिखा कि है एक कुड़ी कने मुंडू है ना ठीक है ना
1: जी
0: तेना नसी के मतलब पत्नी ब्याह की तेक नहीं है मैं जो पता पति ना एक पोस्ट पे ये की बोलिया जागते दे करे दे या कुछ यो कुछ मत बोला बोले मैं अपनी मर्जी ने ठीक है ये बोले इसने कने कने हाल ऐसे बालिक भी नहीं है पता
1: जी
0: जल उन्ना मतलब उन्ना तो अपने देखा ना उन छह था नाबालिग ना एक ता
1: जी
0: छोटे बच्चे भी थोड़े गलत ना हानी बोल दी
1: जी
0: कि
1: जी
0: पेरेंट्स ही गलत ना
1: नहीं जी
0: कुछ
1: बच्चे भी
0: जगह क्या
1: गलत
0: होंगे
1: है
0: हाँ जी
1: जी
0: कुछ जगह क्या होंगे कि माँ माँ प्यो जड़े ने से समझाने की कोशिश भी कर दे उन्हें डांट दे भी है ना पर कई बार दादा दादी नाना नानी या
1: जी
0: कोई और जड़े ने
1: जी
0: सह लगी पौंदे उन्हें चौंचले कर लगी पौंदे ना करना अगे की
1: जी
0: तू कजो बोला जी ने कजो करा दे तू हाँ कने रोक दे रहने दे तू हाँ इन्हें जिंदगी है कन लेकिन नहीं जे थू रोकना टोकना थू रोकना टोकना भी जरूरी है
1: जी
0: क्योंकि
1: जरूरी
0: सह
1: है
0: जिन ठीक है ना तो तिने थोड़ी ये भी रही होनी कमी की अगर माँ प्यो ने टाइम में उन्हें मोटिवेट करना ना या कोई भी
1: जी
0: मतलब जो कुछ दे भी बच्चे ना चाहे मेरे या कुछ और सीधे भी है ना हाड़ फर्ज
1: जी
0: बनता कि दुबे दे बच्चे होने तो बेशक पर उन्हें अच्छा अच्छी गाइड करिए ना कि गलत गाइड करिए। हाँ
1: जी जी
0: जी
1: जी सही है
0: तो
1: ना
0: इससे
1: कि
0: कुछ ना
1: जी
0: हाँ जी तो इससे ना कुछ ही शायद थोड़ी गाइडेंस की कमी रही हो थोड़ी मोटिवेशन की कमी रही हो इस करके उन्हें बच्चे नहीं लगा था पता क्यों तो इस वक्त सोचा था कि हाँ मैं चोर हुई हूँ पर उन्हें नहीं पता कि
1: जी
0: अपना जिंदगी जड़ी से किया खराब करा दी है।
1: जी जी जी क्योंकि अहाँ भी ज़रूर अहाँ अपने पेरेंट्स जो दिख देना या अपने दादा दादी जेड़ा न या बाकी जितने भी फैमिली दे सदस्य न तो ज़रूर है अहाँ जो अच्छा ही ज्ञान अहाँ तक पहुँचा देना, पर
0: जी
1: कुथी न कुथी अहाँ पता नहीं क्या कमी रख देना कि अहाँ दे पेरेंट्स भी ज़रूर अहाँ जो यही चाह देना कि अहाँ आगे बढ़ना ना जी,
0: बिल्कुल जी
1: क्योंकि पेरेंट्स तो कभी भी अपने बच्चे वास्ते बुरा नहीं सोचता
0: हाँ जी पर कई बार
1: जी
0: जी ये भी होता कि पेरेंट्स कमी टाइम नहीं दे पाते तभी
1: जी
0: बच्चे जल्दी ना रोंग वे
1: जी
0: पर चली
1: जी
0: जाते।
1: जी टाइम दी भी तो हाँ बड़ी सही गल
0: हाँ जी
1: बोली, वैसे भी आज के दौर दी गल करिए तो हर कोई अपने लाइफ जितना ज़्यादा बिजी है, या बच्चे दी गल करिए बच्चे भी सोशल मीडिया पर इतने बिजी हैं कि तिनाल भी समय नहीं है अपने पेरेंट्स
0: हाँ जी
1: वास्ते ना जी
0: पर एक सोचने जाए ना
1: जी
0: सोचे जाए तो अहाँ कुछ वास्ते कमा दे कने
1: जी जी
0: अगर अहाँ माँ पेरेंट्स एज ए पेरेंट सोचिए तो अहाँ कुछ वास्ते कमा दे
1: जी
0: अहाँ
1: बच्चे
0: कमाए नहीं अपने
1: वास्ते
0: बच्चों वास्ते
1: जी
0: तो साढ़े अगर हम बच्चे ने टाइम दे दे तो साढ़े कमाने का तो कोई फायदा नहीं है ना
1: जी जी
0: कने
1: जी
0: अगर अहाँ एज ए मतलब बच्चे सोचिए ना तो देखो
1: जी
0: साढ़ा माँ प्यो हाड़े वास्ते क्या नहीं किया
1: जी
0: तो कुछ माँ प्यो के फर्ज भी होंगे कुछ बच्चों के फर्ज भी होंगे।
1: जी बच्चे दे फर्ज भी हैं, कने
0: हाँ
1: माता
0: जी
1: पिता दा फर्ज भी जरूर है ना
0: तो
1: जी
0: दोनों जो तालमेल
1: जी
0: बढ़ाना बड़ा जरूरी है कहना मैं तो ही बोल दी कि मतलब सही गाइडलाइंस करना बच्चे हैं सही
1: जी
0: गाइडलाइन देन था कुछ भी नहीं होता।
1: जी जी जी ता इंदु जी आज तुम्हारा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी
0: आज सुनाई दे कोई अपनी पसंद दा
1: जी मेरी पसंद दा ही सुनना है
0: बिल्कुल जी
1: जी, जरूर जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा
0: तो बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
1: जी, तशो तो अगले जेड़ा श्रोता ने सभी यहाँ जो जरूर कॉल पर कॉल करा देना, तिना दी कॉल भी यहाँ अटेंड कर लियो है जोड़ देने तिना जो भी अपनी गल बात करने। हेलो
2: हेलो।
1: हेलो
2: जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
2: जी मुबारकां तो 15 करती हां।
1: जी? तुहां जो भी बड़ियां सारियां मुबारकां हों जी। जी का
2: धन्यवाद
1: कितनी
2: जी धन्यवाद।
1: की रौनक जेड़ा है से तुहां दाढ़ी लगाई हो है।
2: हाँ जी और ठीक करा
1: जी जी जी तो दाढ़ी कितनी की रौनक लगी है जी।
2: बहुत बढ़िया। उसका निम्बल भैया पहले तो बरखा थी प्यार
1: जी
2: वाले टाइम में निम्बल भी क्या चल चलना चंदा लगाना आता
1: जी
2: निम्बल था
1: जी
2: बस वही बरखा।
1: जी इस टाइम का दिया मौसम
2: इस टाइम तो धूप लगी हो। हाँ
1: जी। अच्छा, धूप लगी हो।
2: जी हाँ
1: जी जी जी और नोईता जी।
2: बच्चे ने बारे में बोला है कि ना हो
1: जी जी
2: उन्हें लिखा अखबार बच्चा अजकल तुम्हें पता है कि कितना बच्चा है
1: जी जी जी
2: उसी ने क्या कुछ नहीं किया है
1: जी
2: रोक लिया माऊ क्यों
1: जी
2: सब ठीक नहीं चला गया कि ना दिखते रहे भाई आई
1: जी
2: जाऊंगा कमरे जाएगी बंदा लगाई ले देनी मुझे फोन ने दिखाई रोक गया।
1: जी। अच्छा, मतलब फोन जेड़े से इस बच्चे ने दिता था तेनी गलत कदम जेड़े से उठाई लिया।
2: हाँ जी तो उन्हें लगता हुआ सही बोलना भी गुनाह हो गई है बच्चे ने बच्चे ने करिए क्या
1: जी। ये भी तो हाँ ठीक
2: फोन
1: बोला
2: ऐसा है
1: जी
2: जब अपने इतनी तो पागल ही करी थी बच्चे।
1: जी जी
2: हाँ जी
1: जी या बच्चों च सही है ना कि सबर
2: टाइम
1: करने
2: शक्ति
1: दी।
2: नहीं है टाइम
1: जी जी बिल्कुल ही नहीं है
2: शक्ति बिल्कुल नहीं। पहले वाले बच्चे जैसे दिखा
1: जी
2: माँ प्यो से डरते थे ना
1: जी
2: पहले से माँ प्यो थोड़ा डांट घट लगाते थे एक बारी अगर
1: जी
2: जैसे ना तेना वो लिखी लिया ना तेना बस
1: जी
2: टाई बड़ा पाले
1: जी
2: आज तक तो हम कुछ भूल दे रहे यार तो
1: जी
2: यही जवाब दे रहे रुक जाओ ना थोड़ा रुक
1: जी
2: जाओ अभी आते हैं।
1: जी चलो वहां तो अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव ही बोली सकते ना जी,
2: हाँ बस यही करना तो होता है बात करनी है कुछ
1: क्योंकि अहां दे जेड़ा शब्द आना से कई बारिया अहां जो बड़ा कुछ सबक दे करी जानते ना जी।
2: हाँ सब कुछ
1: अगर अहां अच्छा बोलते ना मिठे, अगर अहाँ विचार रखते ना मिठी अपनी बाणी रखते ना कुथी अहाँ अपनी जिंदगी जो भी सफलता दी और लेकर जानते ना जी।
2: नहीं
1: तेना
2: जाने
1: अगर
2: अच्छा
1: अहाँ
2: बोलते
1: हमेशा
2: अच्छा जानते
1: जी
2: ना मैंने
1: जी
2: जरा बड़ा आदमी का रेजिडेंट हूँ ना से अच्छी शिक्षा दी
1: जी जी
2: गलत नहीं मिले था
1: जी
2: मैंने रोक टोक जो करनी है तो तुझे गलत तो सुना से करना है ही नहीं लाने की हाँ
1: जी जी तो तिने गलत लगता है तो तुसे जरूर बोल दे ना जी।
2: फिर तू तो टोकना बोलते ना।
1: जी जी तो बोलना ही पड़ा ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
1: जी तो मेघनाथ जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
2: तो फौजी गाना सुनाई दिया है वो हाँ
1: जी कुंदिया
2: देश भक्ति है कोई
1: जी। अच्छा, देशभक्ति का कोई भी गीत
2: हाँ कहो ना बड़े साल हो गए हैं रिटायर हैं अब इतनी नौवीं ताजी याद हो गई कनकत्तर
1: जी जी
2: की लड़ाई याद आई
1: जी
2: यही
1: जी अच्छा, तो हाँ जो भी
2: हाँ
1: अपनी यादा फिरी ते ताज़ा कर लिया तो हाँ ना
2: आज
1: जी।
2: ताजी हुई है याद हाँ
1: जी जी
2: जी हाँ
1: जी चलो जरूर तो हिंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचा दें जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी तो हाँ भी धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते।
2: अच्छा जी ठीक
1: जी तो शो तो चल दे ना अगली फरमाइश दी और सुन दे सा प्यारी दिया फरमाइशा जो ये फरमाइश यहाँ पहुँचा देना इंदु जी तक तो ज़रूर तुम सारी भी इस फरमाइशा जो भी इंजॉय करा कने इस कार्यक्रम दे सफर च भी जरूर जड़े से जुड़ी सकते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने फिर ते हाँ वापिस अपनी गलबात ऊपर पुजी होने कने तो हाँ सारे भी इस गलबात कन्ने जरूर जुड़ी होने न कने अपने जेड़ा काम कार हैं सभी जरूर कराते होने न क्योंकि कामकार करना भी जरूरी है कने जेड़ा गल बात है सभी तुहां तक पुजना जरूरी है कने इसी कने गीत संगीत जेड़ा है सभी तुहां तक पुजना जरूरी है। 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस के बारे च अहां गल करिए तो पर्यावरण का संरक्षण अहां किस प्रकार जेड़ा से करी सकते ठीक है। आज देशभक्ति का जेड़ा दिन है से जरूर अहां बना देन इसी कने अहां अपने देश वास्ते क्या जेड़ा सोच विचार करा देन चाहे से पर्यावरण है चाहे से कोई भी काम है तो श्रोताओं जेड़ा पर्यावरण संरक्षण है अगर अहां पर्यावरण संरक्षण की गल करिए तो कुछ ना कुछ जेड़ा अहां दा पर्यावरण संरक्षण है से थोड़ा दिया बिगड़ी है तो हम सोचा दे उन्हें कि कई बिगड़ी या क्योंकि अहां जेड़ा से अपनी जेड़ा पर्यावरण कन्ने या अपनी प्रकृति कन्ने छेड़छाड़ जेड़ा से जरूर कराते न अहां हमेशा ये बोलते न कि मिट्टी जेड़ा से अहां दी माता है बोलना ठीक है कि मिट्टी जेड़ा से अहां दी माता है कन्ने मिट्टी ही अहां जो अहां दी जेड़ा रक्षा है से जरूर करती है कन्ने अहां पर अहां ये सोच विचार कर देन कि अहां कितना की अपनी इसा मिट्टी दी या अपनी इसा धरती माता दी रक्षा कर देन सोची करी दिखा तो हाँ कदी कि अहां कितनी की रक्षा करा देन यहाँ पर्यावरण संरक्षण दी कितनी की जड़ा रक्षा ऐसे करा दे थोड़ा देर सोच विचार करी कर दिखा। आज जड़ा से यहाँ प्रदूषण दी गल करिए या जल संकट दी गल करिए या प्लास्टिक जड़ा से तीस दी गल करिए या कचरे दी गल करिए या पेड़ पौधे न तिना दी गल करिए कुछ ना कुछ हर चीज़ पर अहाँ अगर थोड़ी थोड़ी नज़र दौड़ाते न तो हर जगह अहाँ जो प्लास्टिक भी जड़ा से यूज़ जड़ा से हर जगह होता या कचरे दी अहाँ गल करिए तो अहाँ नदी नाले ज़्यादातर प्रदूषण जड़ा से करा दे अपने घरे दी साफ सफाई तो अहाँ करा दे पर कुछ ना कुछ अहाँ अपने जड़ा नदी नाले न तिना जो प्रदूषित जरूर करा दे तो ये पर भी सोच विचार करना अहाँ वास्ते जरूरी है। पेड़ पौधे की गल करिए पेड़ों का जड़ा कटाव है से अहाँ जरूर करा दे न चाहे से अहाँ अपने वास्ते जड़ा से अहाँ फायदे दिखा दे कि अहाँ का जड़ा सड़क ऐसे लंबी हुई है या चौड़ी हुई है जड़ा अहाँ का 2 घंटे का सफ़र ऐसे 1 घंटे च हुई है पर कुछ ना कुछ अहाँ अपने जीवन जो भी संकट च जड़ा ऐसे जरूर पहुँचा दे क्योंकि पेड़ पौधे न ताई अहाँ ताज़ी हवा जड़ा ऐसे ले पाते न ताई अहाँ जड़ा फलां की गल करिए या सब्जियों की गल करिए से अहाँ ताज़ी सब्जी जड़ा ऐसे ले पाते न तो है देन क्या है प्रकृति की देन है तो थोड़ा देर सोच विचार करना तो बनता है इसी सोच विचार करने अहाँ फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर तो हाँ सारे भी इंतज़ार जड़ा ऐसे ज़रूर करा दे उन्हें न कि अहाँ कलू दी है तो हाँ तक अगली जड़ा फरमाइश है से पहुँचा देन तो ज़रूर इंतज़ार की जड़ा घड़ी है से तो हाँ वास्ते बिल्कुल ख़त्म है कने एक गीत तो हाँ तक अहाँ पहुँचा देन

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत कने इसी गीत कने यहाँ फिरी थे वापिस तुह तक पुजी हो न कने तुह सारे भी अपना जिड़ा रेडियो सेट ऐसे जरूर ऑन कित्ते होना है या मोबाइल फोन च सुना दे न तो जरूर जिड़ा सुनना जिड़े से शुरू करी दिया क्योंकि गीत संगीत जिड़े ऐसे भी तुह तक पहुँचा दे न कने जिड़ा तुह दियाँ फरमाइशा न सभी यहाँ जरूर तुह तक पहुँचा दे न कने इसी कने हाँ आज जिड़ा गलबात करा देन से करा देन 15 अगस्त दी स्वतंत्रता दिवस दी तो जरूर तो सारे भी ए आज़ादी दा जिड़ा उत्सव है से जरूर मना देन बड़ी ही धूमधाम ने जिड़ा गल करिए यहाँ आज़ादी जिड़े से हर कोई जिड़े से इस उत्सव जो जिड़े से बड़े ही धूमधाम ने मना दौना है कने तो सारे भी इस सफ़र जो भी इंजॉय करा दौने न कने समय का जड़े से बिल्कुल ही पता जड़े से नहीं चलता है कि कालू 2 बजते न कने कालू समय जड़े से अपनी रफ्तार लेकर ही चलता है तो समय के अनुसार जरूर अहाँ चलना है कने तो हाँ सारे भी समय के अनुसार जड़े से चला दौने न कने चलते न फिर तो थोड़ा दिया अगे बढ़ते न कने तो हाँ सारे जो ही एक बारी फ्री ते स्वतंत्रता दिवस दियाँ ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि जेड़ा शुभकामनाएं से जरूर तुह तक पहुँचा दी होनी न चाहे से व्हाट्सएप के माध्यम ने पहुँचा दी होनी न या चाहे से कॉल या मैसेज के माध्यम ने भी तुह तक पहुँचा दी होनी न कने फ्री ते जेड़ा याद करने का जेड़ा मौका है से एक दूए जो जरूर जेड़े से मिली आंदा है तो जरूर याद करना ही जरूरी नहीं है थोड़ा दिया अहाँ जो किस प्रकार अहाँ अपने देश की रक्षा कर देन या समाज की रक्षा कर देन या अपना जेड़ा करियर है उस जो बना देन या अपने बच्चों जो किस प्रकार सही या गलत का जेड़ा ज्ञान है से दिन देन तो इसी कने अहाँ कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाते न कने तो हम जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर क्योंकि गलबात के बाद हूँ गीत संगीत तुह तक पुजियां तो कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से और भी प्यारा लगना

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है तुहां सारिआं दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि करने। इसी करने यहां फ्री ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने तुहां जो लेकर चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुहां सारे भी इंजॉय करा।

तो श्रोता तो सारे इस गीत जो इंजॉय करा देन जरूर अहाँ ये गीत पहुँचाइए उस्मान जी तक तने से रहने वाले न धर्मशाला ते। इसी कने तो सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा सफर है समय है से तो तक रेंद्ते हैं 2-3 बजे तक। तो जरूर समय अहाँ जो हूँ बोला दे कि तुम इस कार्यक्रम से अनुमति जोड़ा है से जरूर ले लिया। तो जरूर अनुमति भी लैनी है कने जरूर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की फ्री तो सारे जो ढेर सारी शुभकामनाएं कने जोड़ा तिरंगा है सियाह की हमेशा शान है कने जोड़ा भारत जोड़ा है सियाह की जान है कने जितने भी वीर जवान हैं तिना इस देश वास्ते जोड़ा बलिदान दिता है तिना जो भी शत शत नमन है। तो जरूर इसी कने तो सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी पंती।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल
3: की।
4: उसका
5: पापा पापा दूध उबल रही है।
6: उबल रहा है, रहा।
5: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के हाथ में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा
7: छताई।
5: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
6: बेटा खाया नहीं, खाई।
5: ओके ओके।
2: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
6: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
5: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
5: नहीं मम्मा, आ गई।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी।

0: अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
0: स्मार्ट गर्ल।
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा
2: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
3: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
4: कहाँ रखेंगे टीवी? अपने वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
5: टीवी देखने बुलाएंगे?
6: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
7: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
6: क्यों?
7: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
8: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
9: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
10: वही असली तरक्की।
9: एक कदम स्वच्छता की ओर।
11: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
12: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
11: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई?
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
12: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
13: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
13: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। देखो देखो शुक्ला जी आ गया, देखो
12: शुक्ला जी। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
15: वही असली तरक्की।
14: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
17: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
18: मैं तो बुरी।

यानो दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पुठे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और श्रोतों आऊँ हाँ तो सुगे तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। क्या हाल चाल न तुम दे और क्या हाल चाल न तुम दे ग्रां रहे। उम्मीद करनू तो है भी ठीक ग्रां भी ठीक। श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ यानी कि तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर हो चुके हुआ। आइए श्रोतों कार्यक्रम रा आगाज कर देने सबसे पहले इस खूबसूरत गीत होगी। आइए हूं देन श्रोतों एक गीत।

रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा श्रोतों इस वक्त चल रही है तुम जैसा भी वे रेडियो सेट माता श्रोतों हेर लिया मुरली कैसे बजाई काने। जी हाँ, ऐसी बजाई मुरली कि शुद्ध बुद्ध किया सुख होएगी। ईशान भारद्वाज इस गीत अंदर ये दस हुआ की मुरली ऐसी बजाई थी कि शुद्ध बुद्ध किया सुख होएगी थे। तैयार श्रोता हूँ कार्यक्रम जो हगु बढ़ंदन और हगु हुंदन ये प्यार दिया गीत तो है बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी।

0: सो तो होप सो तो ये सब कार्यक्रम जो एंजॉय करो करते बुने ने और कार्यक्रम इस समय बिल्कुल लाइव चल रहा है तो ये सब श्रोता कॉल कर सकते हैं जितने भी श्रोता सोगे जुड़ रहे हैं 7018887098 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करें नो साझा करें नो 7018887098 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं यह गला रहा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लाइक जरूर भुआ रेडियो मंच दस ने लाइक किया सो जरूर भुआ शो तो है ना तो चलिए पहले तब तू कजो किया है इंतजार करो करते थे किन्दे सब श्रोता के ने सो जुड़ेगा तथों बाद है मुबारक दिन कजो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन हाँ इन श्रोतागण के सो के कनेक्ट भी लगी पे हिन भूणा शो तुम बहुत इंपॉर्टेंट दिन हर एक नागरिक वास्ते हर एक जो भारत रह निवासी तसी वास्ते अज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था शो तुम स्वतंत्रता दिवस रही इंडिपेंडेंस डे रे जो अंग्रेजी में बल दें तो सभी जो हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रोतों इन श्रोतागण अस हो गए कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे हैं नमस्ते जी
1: बल्लू कर दा था मेरा नाम जतिन
0: अच्छा जी जतिन जी ठीक ठाक न और करे लगुरेन
1: करी
0: अच्छा जतिन जी तो है पहले भी कॉल कर रही थी तो दो ही मौका करी थी कॉल ना तो है अच्छा जतिन जी तो है कॉल कर सकते हैं लेकिन अक कार्यक्रम में आके एपिसोड में आके मौका कर सकते हैं है ना
1: जी
0: आप जो करी थी तब इतनी बात ना करनी तुसु कॉल ठीक है
1: आज कने
0: हाँ दोते कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं तो है हाँ जी अच्छा तो जतिन जी आज 15 अगस्त था है ना 1947 है बखूबी जान दें इनके इनका देश के असो आज़ाद भुआ थो अंग्रेज रे जुलमा थो है ना और बहुत मोटे मोटे नान जिन्हें सो आज़ाद कराओ तू बहुत वीर सपूत ने जिन्हें सो आज़ाद कराओ थो और असु सभी इस लायक बना हुआ क्या सब अपने अपने घर है काम कार कर सकने है ना अगर गुलाम बुंदे थे अपनी मर्जी रहा कुछ ना बुना तो है ना चाहे दस तो स्कूल लोग छुरे थी है स्कूल है ना बल दे हाँ जी बल देन स्कूल लोग छुरे थी है अच्छा स्कूल है क्या क्या करोगे जी आज की जिगरी तो है
1: कुछ भी नहीं स्कूल लोग छुरे थे ऐसे डंडा लटकाओ ना
0: हाँ जी
1: डंडा लटका हुआ था फिर प्रेयर जरूर करी फिर जनगण मन गाऊ
0: अच्छा
1: फिर क्लास समझ चली गए
0: अच्छा फ्लैग होस्ट करो तो है मतलब है ना तो ये बोल दे तिरंगा लहराओ अपना है ना
1: हां जी
0: ठीक है कौन दिन गीत होना पसंद कर ले तो है
1: आऊं चाहे बोल दा ए जोवन लुड़दा वो लुड़दा आया
0: जोवन लुड़दा वो लुड़दा आया
1: हां जी
0: ठीक है जी जरूर तुसु ये गीत होने लगा है ठीक है जी धन्यवाद
1: इंदे घर कड़ी ना
0: इंदे घर योली जी
1: अच्छा
0: जी
1: योली कड़ी
0: पूरी डिटेल तुसु बाद ना दिले इंदे अगले शो था सो की कनेक्ट लग रही बुना है ना जी नमस्ते श्रोतों अगले श्रोता कनेक्टेड है नमस्ते जी हेलो हेलो नमस्कार जी जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन तुम आवाज नहीं छू आवाज नहीं चुगड़दे असु तक ना कुछ चुगड़दे कौन बोलन देन जी माफ करे शो तो इन शो तो जो असु डिस्कनेक्ट करना पड़ना जो कि आवाज किया सुना इच्छु कर दे हा ता फिलहाल कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और जो फरमाइश रहा दौरा सो जरूर पूरा करते हैं। इतों अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: हाँ जी, ट्रैवल दे जो गाना सुनना।
0: हाँ जी,
1: जो बन लूट दल
0: बेटा मैं बल्लो तू है ना, तो है कनेक्ट पूछू है, तो है फरमाइश देते आ और अब इतों बात कॉल ना करनी तू सुना जी।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, अमे होने लिए तो फरमाइश देते और अब तुंदी फरमाइश पूरी पूछ गाने।
1: हाँ जी
0: ठीक है जी। तैयार शो तो कार्यक्रम जो हगो भड़ंदे हिन और चलिए बच्चन गलती हर किसी थम बंदे शो तो ना तीन उन्हें पता कि रेडियो स्टेशन और रेडियो सू कितने लख हजार मन के सो इस समय हूँ करते हैं। तो चलिए कनेक्ट बच्चों कर दे, यारे भी किस्मत है, नहीं तो कई इन श्रोता ऐसे जो लगातार करते रहन दिन करते रहन दिन कॉल और ना बंदे कनेक्ट है ना, कॉल ना बंदे कनेक्ट कई बार। अपनी अपनी किस्मत बुनते, अपने अपनी किस्मत रंग रंग बाजे बुनते हैं। भैया यारी फरमाइश कर लेंदेन पूरे इतों पहले कि दुआले फिरी फोन करी ना सू।

0: श्रोताओं तो ऐसा बिल्कुल कॉल कर ही सकते हैं 7018 8107098 पर, नंबर एक मौके फिर 7018 8107098 पर। आज श्रोताओं बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास दिवस था, और इस खास पर्व पर तुसु सभी जो वेड़ी गुंजन रही पूरी टीम रही औरतों की सो बहुत बहुत मुबारक भून, स्वतंत्रता दिवस री बड़ी बड़ी मुबारक भून, तुसु सभी जो हार्दिक शुभकामनाएं भून इंडिपेंडेंस डे री है ना, इनके श्रोतागण भी मुबारक देने वास्ते गए सो बिल्कुल इच्छुक हैं श्रोताओं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक न?
1: हाँ जी सर जी। 15 अगस्त दियाँ बड़ी बड़ी मुबारक उन गुंजन फैमिली जो
0: जी, तुसु भी बड़ी बड़ी मुबारक भून जी, मोटी मोटी मुबारक भून तुसु भी।
1: धन्यवाद सर जी।
0: जी और ठीक ठाक ने वाजी बाजी ने?
1: सब बढ़िया सर जी, ठीक ठाक ने सर जी, चलिए जिंदगी सर जी।
0: अच्छा, और चलो जिंदगी चलना चाहिए दिया। 15 अगस्त की बड़ी बड़ी मुबारक बुन तुसु, बड़ा सिंपल और साधारण वे माँ है ये बल देने की 15 अगस्त की मुबारक बुन, इस माटी री महक री आवाज़ की आसू दिंदा हा, मतलब ये महक इंदे हिमाचल रही। कौन दिन गीत होना पसंद कर ले जी?
1: आज तो सर जी आज तो थोड़ा मतलब वो देशभक्ति के गाने होना चाहिए सर।
0: चलिए
1: दिन पर गद्याड़ी टाइप है तो कोई गाना सुनाई ने गद्याड़ी टाइप ही।
0: ठीक है जी, जरूर
1: जी सुनाई दे सर जी, में जो ये सामियाना सर जी।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर
1: होने ले जी। धन्यवाद सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। श्रोताओं तो ऐसा भी ट्यून कर रहे हैं समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला, और हूँ सचिन कपूर। हाँ, कुछ नशा तिरंगे री आन रासू हो, कुछ नशा मातृभूमि री शान रासू हो, श्रोताओं एह तिरंग एह लहराऊ कर दिन हर जगह ए तिरंगा नशा, ए हिंदुस्तान री शान रासू हो, श्रोताओं बहरहाल इंद अगले श्रोता भी असू गे कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार। 15 अगस्त की बड़ी बड़ी मुबारक भून, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता री जय। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आजाद बछूरे सो 79 ईयर्स के सो कंप्लीट हुए है ना जी?
2: हाँ जी।
0: और कदे है लगो कर दे ना?
2: बढ़िया बढ़िया
0: करे लग रहे
2: लगू रहे तो बस मैं दीता फेरा मैं बस कहते हैं।
0: अच्छा बज भी है उस किनारी?
2: हो
0: अच्छा बुरी तरीके होगी
2: अल्ले ताल की अब आप आते हैं यार।
0: अच्छा अच्छा कुरला भी बड़ा राव कर दा था।
2: चलो टाइम मैंने फिर अपन ना रहे ये पानी थोड़ा देने
0: था तले ना कुरले टाइम तो लितराई की दिन बुवे मेरे साथ हो गया ना जी।
2: हाँ ये कड़ी बुवे आज बच्ची के साथ है।
0: ओ अच्छा 15 तारीख का ने वे दिमाग करे घूमेगो। 7 दिन
2: लास्ट जो 13 से 8 लग गया ही है महीने का बस बरसात
0: बस चलो जरूरी भी है बरसात। चलो इस बार ये कि इंदे इड़ी धर्मशाला में या इंदे धर्मशाला में के सो इतना नुकसान मतलब ना हुआ ना तेना तेना
2: तब बारी भर हो जे ठीक बार बरसात है।
0: हाँ इस बारी थोड़ा बरु भी खरा आया तो ठीक ठीक भी बरु
2: अपना लिव क्या बात हो गया तो मुझे इतना आयुर्वेदी।
0: हाँ जी
2: मतलब तेरा कोई पता ना उनका खाने ने क्या करी ना।
0: ये तो कोई भरोसा नहीं जी, हिड़ी मनुरा भरोसा नहीं था ये तो फिर अंबर। अच्छा जी कौन दिन गीत होना पसंद कर लेते है?
2: होना ही नहीं यार के बोलते है बना ये सब भक्ति मेरे माता में के लोगों लाता में जेस कर दी मानी।
0: चलिए ठीक है, तुसु पता है इंदा गद्याली कार्यक्रम अत इंदा गद्दी सिंह रे कोई गौरा नहीं देशभक्ति गीत तो चीये तो हट के ही ना मु लाइव ना तो ती अंदर सब देशभक्ति रे गीत चलने इंदे।
2: धन्यवाद
0: जी। नमस्ते।
2: ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੁਣ ਆਈ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੀਏ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਰਹਿ ਗੀਤ ਹੁਣਾਣੇ ਜੀ ਮੂੰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਔਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਕਿ ਅਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਰਹਿ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ
2: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
0: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ श्रोता इन अगले श्रोता गणस हो गए कनेक्टेड हैं तो ऐसा भोनू करते हैं इस समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला। नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
3: और वचन जी क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया जी। तो बल्ले तुम दे क्या हाल चाल? ठीक ठाक ना?
3: बस बढ़िया जी, ठीक ठाक।
0: अच्छा जी, कौन बल्लों देन और कड़ी थो बल्लों देन?
3: ये तपो होने थे सफेदो राम।
0: सफेदो राम जी जी जी, जी। 15 अगस्त है। याद करना जरूर कर ले इस गीता तो बाद बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रही।

0: श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेडी गुंचन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर रतुंदा अपना आर जे वेडियो जो कि बहुत बहुत स्वागत पुनः तुंदा सभी रहा सभी होने आड़े रहा सभी श्रोतागण रहा ये कार्यक्रम जो हगो बढ़न श्रोतों और बिल्कुल बहुत ही प्यारा दे गीत श्रोतों स्वामिया इस गीत तरह टाइटल की असो दितरो तो श्रोतों विजय कपूर री आवाज़ में गीत तो और श्रोतों इस गीता में कि असों दसना चाहता हाँ कि दसो करते हैं कि किस प्रकार होगी कि श्रोतों सो इंसान रा जोर घटन दगनता हा इंसान रे जवानी में कि असो सेरे सब सेरे सगे दोस्त सगे संबंधी सो सब सोगी बुंदन हाँ न तशीले दिमाग बुंदा पह बुंदा हा बल बुंदा हा है ना सब कुछ बुंदा है तो जी जी तीन बुढ़ापा इंदा गंदा तीन तीन सिरे सब सब कुछ की सोच छुटन का गंदा सिरे अपना शरीर ही सिरा साथ ना दिंदा हा और साथ दिंदे न तो सिर्फ जो सेरा जवानी में अच्छा व्यवहार बुना हा जिन तगर बलदे ना इंदे अंग बाह चल रहे ना तीन तगर तो है कुछ भी करी लेंदे न घसी होना मनते घसी अगो कि सोना झुकते हैं लेकिन जहने ये अंग बह आंदे के न सो रुलना लगी पेंदे ना मतलब जहने सियाने बच गए हैं जहने असू तस परसन री जरूरत की सो जरूर पेंदे हा शोतों है ना जाए सो इंदा पुत्र बुआ जाए नुख बुआ जाए दियो बुआ अग परसन री जरूरत की सो असू जरूर पेंदे जाए हसबेंड बुआ जाए वाइफ बुआ है ना अग परसन री जरूरत की सो जरूर पेंदे ता ये डिपेंड करता हा असू पर शोतों कि यह कै जवानी अंदर कमोरा कै खटुरा कि ना व्यवहार किया सो अपना रख रहा सो व्यवहार किया सो सियाण दी मौका किया सो कम में इंदा हा शोतों बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं श्रोतों और जे क्या सब जानते हैं कि अज श्रोतों है 79 साल कंप्लीट करी बैठे आज़ादी रहा असी में मां दाखिल बुच गया हिंद स्वतंत्रता दिवस है मनाऊ करते हैं श्रोतों और 15 अगस्त 1947 जो इन देश जो कि असो ब्रिटिश हुकूमत थो 200 साल वह शासन थो कि असो आज़ादी मोड़ी थी श्रोतों ये दिन असो सभी वास्ते केवल एक छुट्टी वह दिन नहीं है श्रोतों बल्कि ये इन दे वास्ते देश का गौरव है सम्मान और एकता रा प्रतीक है श्रोतों इसको क्या दसना चाहता है श्रोतों अज है सब आज़ाद हवा में कि असो सांस ले कर दें तो यह सब आसानी थो सांस के ले कर दें तो मैं सोचा कि सांस असू कि सो आज़ादी थो मुड़ो ये मतलब बड़ी आसानी थो मुड़ो कर दिया ना जी इस आज़ादी रे पीछे कि असो सदियों रा संघर्ष अनगिनत बलिदान हिन श्रोतों इन देश जो आज़ाद कराने वास्ते महात्मा गांधी भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आज़ाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और झांसी री रानी लक्ष्मीबाई जैसे हज़ारों स्वतंत्रता सेनानी के सो अपना सब कुछ निछावर के अशोतों सो करुआ हा अशोतों गांधी जी यह सत्य और अहिंसा रे मार्ग पर चले कर के सो अंग्रेजा जो झुकने पर के सो मजबूर करी दिता तट्ठी दुई और अग्र है हिरनता भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी युवा वीर के सो हंसद फांसी पर शोतों चढ़ गया और फांसी रे फंदे जो कि सो हंसद तीन चूमी लो शोतों नेताजी वा नेताजी है किया सो नारा दिता तो शोतों कि तो है असू खून दिया असू तुसू आज़ादी देने हाँ अजय दिन इन सभी महान आत्मा जो याद करने रहा और त्यारे चरना में शीश झुकाने रहा किया सो ये दिन हा शोतों पर हाल इन अगले श्रोता असू की कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
1: हेलो नमस्ते जी
0: हेलो नमस्ते जी
1: क्या हाल है ठीक हो
0: बहुत बढ़िया जी कौन बोल लंदन और कड़ी था बोल लंदन
1: पहले था मेरी हर प्रश्न को झुकाने पूरा जो दुनिया भरी बार है इन सारे जो शुभकामनाएं है उद्धार दिवस दिया
0: जी जी जी
1: तो सचिन जी तुम्हारे बरस बोला कर दे कि इतने लोग का मतलब योगदान दिया बलिदान दिया देश वास्ते त्याग किया
0: जी जी जी
1: पर तेना लोकां ने त्याग किया है ना तेना देश तो कुछ मंगया नहीं था ठीक तेना लोकां त्याग किया निस्वार्थ तेना लोकां कुछ मंगया नहीं था पर आजकल जी जंजीर जनता ना सब बोलदी भी देश ने साडे वास्ते क्या किया
0: बिल्कुल
1: पर दुख सा मतलब आदमी अपने कर्तव्य प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है अपने अधिकार मंगने चाहता कि मेरे अधिकार मेरे अधिकारों को मिलना से बड़ी जल्दी अपने अधिकार अपने कर्तव्य करने अधिकारा करने कर्तव्य ज्यादा से ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूसरा मैं गल बोलना चाहता कि देखो ना जो तीन लोग अपना निस्वार्थ धन मन तन मन धन लगाया धन मिल गया तन मिल गया सब कुछ देता छोटी उम्र से देता बेचारे तीन खेल कूद लेते उम्र से सब कुछ त्याग दीते थे तीन हम बोलते आजादी बड़ी सस्ती मिली हो सस्ती मिली हो आजादी लगभग 8,60,000 32,000 आदमी मरे आजादी से निस्वार्थ अच्छे भाव ने काम कर मतलब तीन लोग मतलब आजादी का त्याग है सच्ची श्रद्धांजलि होनी क्योंकि इससे लोग ऊपर बैठे क्या सोच रहे यहाँ कितने लोगों वास्ते श्रद्धांजलि मतलब योगदान दी है थले बैठी करप्शन करा कर दे बेईमानी करा कर दे सही ढंग से काम नहीं करे ऑफिस काम नहीं करा कर दे जैसे लोग सुबह बड़े दुख मनाते होने पर बैठे सोच बैठे बैठे बड़े दुख मनाते होने तेरे
0: नहीं तो सत्य है गल है तो आजकल ही सत्य है
1: बिल्कुल सह लोग पर क्या सुख रहे पर क्या सुख रहे कि यार हम आज कितने लोग कटिया लोग कौन से अपने योगदान देते हैं ये लोग हम भी आज कर सकते हैं कर सकते हैं पर नहीं
0: धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने वास्ते और फेसबुक रे माध्यम था धन्यवाद करना चाहूँ हाँ फेसबुक इन दे फ्रेंड्स रा जो व्हील जो इतना लाइक कर दें शेयर कर दे हैं और ये बोलना चाहूँ श्रोतो आज का दिन बहुत खूब बहुत हसीन आसू सब भी वास्ते जय हिंद वंदे मातरम। फिलहाल फरमाइशा दौर के सो पूरा कर दें श्रोतों।

तो शतों समय बचेगा फिलहाल इस कार्यक्रम तो इजाजत लेने वे आखिरी फरमाइश सो भी दुई बोला सो जरूर हुनाने हिन ताऊ सचिन कपूर फिर मिलनो तुसो कि 6 बजे है ना देशभक्ति रे कुछ नए गीता लेकर और कुछ एक और खास जानकारी लेकर फिलहाल इस कार्यक्रम तो मुझे मुंजो यानी सचिन कपूर जो दीजिया तो है दे दिया तो है इजाज़त हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे माँ बाप रे सेवा करते रहे और शतों इस भारत देश वास्ते जहने भी कभी भी आज ना जो कति साल बाद भी अगर कभी कम इला तुंदा खून इस देश वास्ते तो ज़रूर निछावर करें शोतों अपना बलिदान की सो जरूर निछावर करें। बहरहाल इन शब्द था हूँ सचिन कपूर लेनो इजाज़त। हर हर महादेव। वंदे मातरम। भारत माता री जय। इंकलाम जिंदाबाद।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रूम से चटनी चढ़ाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए। देखो
12: शुक्ला जी, वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
14: वही असली तरक्की।
13: एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जॉकी सचिन कपूर। 15 अगस्त की आज ये खूबसूरत शाम और धर्मशाला में है तो बरसात होना जाहिर सी बात है, बरसात होना तो ज़रूरी भी है श्रोतों, क्योंकि बरसात का मौसम है। और आज आज़ादी का जश्न हम सभी ने बखूबी मनाया, बहुत प्यार से और हर्ष और उल्लास के साथ जो है वो आज हमने आज़ादी का ये पर्व जो है वो मनाया श्रोतों। जी बिल्कुल, आप सभी को बताना चाहते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत के 200 साल के शासन से आज़ादी मिली थी श्रोतों। जैसे कि हम सभी बखूबी जानते हैं, ये दिन हमारे लिए केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है श्रोतों, बल्कि ये हमारे देश का गौरव, सम्मान और एकता का प्रतीक है। जी बिल्कुल श्रोतों, आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं ना, वह हमें आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के पीछे सदियों का संघर्ष और अनगिनत बलिदान छिपे हैं। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपना सब कुछ निछावर किया है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नेताजी ने नारा दिया था ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज का ये दिन इन सभी महान आत्माओं को याद करने और उनके चरणों में शीश झुकाने का दिन है श्रोतों। जी बिल्कुल, आप सभी को वीडियो गुंजन के पूरे परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे देश के सभी प्यारे नागरिकों को वीडियो गुंजन की पूरी टीम की ओर से जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, इस पर्व की। बहुत सारी जानकारियां जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। तो चलिए, ये मौके होते हैं, ये दस्तूर होते हैं श्रोताओं, और ये तारीखें होती हैं उन लोगों को याद करने के लिए जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए इस मिट्टी को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए। तो उन लोगों को याद करने के लिए ये दिन होते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का लता जी के इस प्यारे से गीत के।

শত FM ব্যান্ড 91.2 MHz পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা আপ সবাই নে টিউন কিয়া হ্যায় জয় হিন্দ কি সেনা বাকি মেয়ে না তো শ্রোতো আল্লাহ তাজি কা বহুত হি প্যারা সা ইয়ে গীত থা জো হাম সবাই নে সুনা রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা মে অর ইয়ে মাত্র এক গীত নেহি হ্যায় শ্রোতো ইয়ে আরজু কো জগানে ওয়ালা ও গীত হ্যায় ইয়ে বিলকুল হামারে জজবাতো কো জো হ্যায় ও জগা দেতা হ্যায় ইয়ে বিলকুল हमारे सीने में वो एक बार फिर से वो ललक जो है वो पैदा कर देता है। देशभक्ति का ये गीत हमारे रोम रोम में जो है वो देशभक्ति जगा देता है, क्योंकि हम उन लोगों को जो है वो ज़रूर याद करते होंगे जो उनके परिवार वाले लोग हैं, लेकिन आम लोग शायद ना करते होंगे। तो इसलिए ये गीत हमने आप तक पहुँचाया श्रोताओं की, आज उन सभी वीरों को जो है वो याद करने का दिन है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद भी उनको कर लो ना, जिन्होंने अपनी जान दी है, जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश के लिए, इस माटी के लिए। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं और हिमाचल प्रदेश देवभूमि से जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है उन सभी को मैं एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाम जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का हमेशा

नाम रहेगा। तो आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में। श्रोताओं बिल्कुल ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल समर्पित है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कार्यक्रम के अनुसार जैसे हमारी शीट बनती है, जिस प्रकार से हम लोग कार्यक्रम का एक, हमने आप सभी को पता होगा बाखूबी की एक एक ड्राफ्ट का जो है वो हमने सेट किया होता है कि पहले क्या उसके बाद क्या है ना। तो सबसे पहले हम मौसम की जानकारी देते हैं आप तक। श्रोतों इस समय काफ़ी ठंडा मौसम जो है वो हो चुका है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान है। नमी की बात करूं जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, तो लगभग 95% के आसपास है श्रोतों। और विजिबिलिटी इस समय जो है वो कम होगी क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब है। आई थिंक 6-8 के बीच जो है, किलोमीटर के बीच जो है वो विजिबिलिटी है। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से, इस प्यारे से बिल्कुल श्रोताओं लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

क्या बात है श्रोतम, FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंचन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम भारतीय लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जी बिल्कुल, एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नाचीज सचिन कपूर की ओर से। तो जो तो आप सभी ने ये जो है वो जाना भी है, देखा भी है और महसूस भी किया है कि हमारे भारत देश ने जो है वो फर्श से लेके अर्श तक का सफ़र जो है वो तय किया हुआ है शतों, है ना, आज़ादी के बाद शतों। आज का भारत एक आत्मनिर्भर और तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है। हमें चाँद के, चाहे हम चाँद की बात कर लें, चाँद में तिरंगा फहराने की बात कर लें, चाहे हम इसरो की बात करें श्रोतों, इसरो आज दुनिया के शीर्ष स्पेस एजेंसियों में शामिल है श्रोतों। आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क भारत के पास है श्रोतों। गांव-गांव तक इंटरनेट जो है वो पहुँच चुका है ना जी। ओलंपिक से लेकर क्रिकेट तक हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देश का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं श्रोतों। रक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें श्रोतों, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भी हम बात करें तो हमारी सेना आज दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक जो है वो गिनी जाती है। आज पूरी दुनिया हम भारत की ताकत, हमारी संस्कृति और हमारे लोकतंत्र का लोहा मानती है। हमें गर्व है कि हम इस महान देश के नागरिक हैं और हम सभी को ये गर्व होना चाहिए कि हम सभी इस महान भारत देश के नागरिक हैं श्रोतों। लेकिन श्रोतों, आज़ादी का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज हमारे सामने सीमा पर दुश्मन नहीं है लेकिन देश के अंदर गरीबी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, अधिक पेड़ काटना, नशा फैलाना, सूखा नशा फैलाना, ऐसे दुश्मन मौजूद हैं हमारे देश के अंदर भी श्रोतों। देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीमा पर जाकर लड़ना नहीं है श्रोतों। यदि हम अपने आसपास सफाई रखते हैं, कानून और संविधान का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये भी सच्ची देशभक्ति जो है वो कहलाई जाती है श्रोतों। आइए आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, आप सभी बने हुए हैं इस समय वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। आइए लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को अब इस प्यारे से गीत की ओर।

बिल्कुल शोतों, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। आई शोतों, बिल्कुल आपसे रूबरू होते हैं इस अंतराल के बाद, छोटे से अंतराल के बाद।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। श्रोताओं बताना चाहता हूँ 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था ना श्रोताओं, तब हमारे पास सुई तक बनाने की तकनीक नहीं थी। आप सभी इस बात से रूबरू होंगे कि हम एक सुई तक नहीं बना सकते थे, गरीबी और भूखमरी चरम पर थी श्रोताओं। आज भारत दुनिया के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर खड़ा है श्रोताओं, और इसरो ये चंद्रयान और मंगलयान मिशन, डिजिटल इंडिया और यूपीआई डिजिटल पेमेंट में भारत, आप सभी को पता है कि भारत इस समय जो है वो बिल्कुल कहां से कहां है। फर्श से अर्श तक पहुंचने में भारत ने ताकत रखी है श्रोतों। आज दुनिया के बड़े मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, शांति पर भारत की आवाज़ जो है वो सुनी जाती है श्रोतों। आज हमें सीमाओं के साथ साथ देश के अंदर, मैंने कहा ना कि देश के अंदर जो छिपे दुश्मन हैं इनसे भी लड़ना है। जैसे गरीबी हो गई श्रोतों, बेरोजगारी हो गई है ना, इनसे भी लड़ना है। भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, एक फ़ोन पर काम हो जाते हैं, ये जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे ना तब तक बड़ा मुश्किल है एक आम नागरिक का श्रोताओं, है ना। देश तब पूरी तरह आज़ाद होगा जब समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी एक सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा श्रोताओं। देश केवल नेताओं या सैनिकों से नहीं बनता श्रोताओं, नागरिकों से बनता है, है ना। ट्रैफिक नियम का पालन करना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, टैक्स ईमानदारी से जो है वो भरना और अपने काम को पूरी निष्ठा से करना है, आज की देशभक्ति है श्रोताओं। हम सभी को जो है वो श्रोताओं एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए और जय हिंद वंदे मातरम हमेशा बोलना चाहिए, भारत माता की जय ज़रूर बोलना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ इन चीज़ों से जो है, जो हमने बताई श्रोताओं, इनसे ज़रूर लड़ना हमें पड़ेगा, तभी जो है वो हमारा देश बुलंदियों की ओर जो है वो जा सकता है। बहरहाल आप सभी आरजे सचिन कपूर को सुन रहे हैं, लेके चलेंगे आप सभी को, क्योंकि मोहब्बत तो हम सभी को है, दिल दीवाना हमारा ज़रूर है।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारियों के साथ आप सभी श्रोताओं को जो है वो रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, हिमाचल में आगामी 20 अगस्त तक मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं, 20 अगस्त तक जो है वो बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जैसा कि आप इस समय बाहर अपने घर के बाहर खिड़कियों से या दरवाज़ों से जो है वो देख रहे होंगे या बरांडे में बैठकर अपने आंगन में बैठ के अपने प्रांगण में बैठकर जो है वो नज़ारा इस समय आप देख रहे होंगे बारिश का। तो बिल्कुल ये नज़ारा आप 20 अगस्त तक देखते रहिए, सिलसिला 20 अगस्त तक चलता रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कई ज़िलों में जो है वो 2-3 दिन जो है वो श्रोताओं भारी वर्षा का अलर्ट जो है वो किया है। मौसम विभाग ने जो है श्रोताओं वो बताया है कि 16 अगस्त को यानी कि कल जो है वो चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर ज़िला में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर ज़िला में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है श्रोताओं। 18 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर ज़िला में भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 17 और 18 अगस्त को मौसम सबसे अधिक खराब रहने के आसार हैं। इन दिनों में भूस्खलन, नालों और खड्डों में जलस्तर बढ़ने तथा यातायात प्रभावित होने की आशंका भी है जताई जा रही है। लगातार बारिश और भूस्खलन का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है श्रोताओं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की शाम की रिपोर्ट के अनुसार बात करूं तो प्रदेश में जो है वो 114 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी ज़िला में सबसे अधिक लगभग 40 सड़कें बंद हैं, कुल्लू में 33, शिमला में 13, चंबा में 9, ऊना कांगड़ा में 6-6 तथा सिरमौर में 5 सड़कें बंद हैं। यातायात पूरी तरह से बंद है श्रोताओं। राज्य में 250 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। अकेले मंडी ज़िला की मैं बात करूं तो 212 पेयजल योजनाएं ठप होने से कई उपमंडलों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है श्रोताओं और प्रदेश में 10 ट्रांसफार्म खराब हैं। इनमें शिमला ज़िला में 7, कुल्लू में 2 और चंबा में 1 ट्रांसफार्म शामिल है। तो ये थी अब तक की रिपोर्ट श्रोताओं, मौसम से जुड़ी जानकारी से जुड़ी। आप सभी बने हुए समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से देशभक्ति के गीत की ओर। अब तुम्हारे हवाले वतन साथ।

बिल्कुल, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये गीत सुनने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अब हमारे हवाले है वतन, तो हम वतन की सेवा करेंगे, हम वतन के साथ जो है वो खड़े रहेंगे और वतन की सेवा करेंगे दिन रात। लेकिन हम आज़ाद तो हुए हैं श्रोतों, मेरे जहन में ये सवाल हर बार आता है, हम आज़ाद तो हुए हैं लेकिन हम अपनी सोच को कैसे आज़ाद करें, मानसिक अपनी मानसिकता को कैसे आज़ाद करें श्रोतों? जी बिल्कुल, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर का ये खबर है जो आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। पुलिस थाना सुंदरनगर में 14 वर्ष निवालिक बालिका के बयान के आधार पर जो है वो दुष्कर्म का मामला यानी कि रेप का मामला दर्ज किया गया है श्रोतों। पीड़ित जो है वो 10वीं कक्षा की छात्रा है और पिछले करीब वर्ष से जो है वो सुंदरनगर में रह रही है। पीड़ित के अनुसार 13 अगस्त को सुबह जब उसकी तबीयत खराब होने पर उसे सिविल अस्पताल सुंदरनगर लाया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों की जाँच के दौरान उसका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया श्रोतों। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई और बालिका का बयान दर्ज किया गया। बालिका ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह अपने माता के साथ सुंदरनगर से चंडीगढ़ गई थी। वहाँ ब्लॉगिंग करती थी श्रोतों। सेक्टर 118 चंडीगढ़ स्थित एक जगह जो है वो रुकी थी। आरोप है कि उसी रात वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी दी। पुलिस के अनुसार कथित घटना का स्थान जो है वो जांचा गया श्रोतों। पंजाब की पुलिस से जो है वो संपर्क किया और नियम अनुसार जो है वो FIR दर्ज कर दी गई श्रोतों। DSP सुंदरनगर भरत भूषण ने बताया कि मामले की आगे की कार्रवाई जो है वो संबंधित पुलिस थाना वहाँ पर दे दी गई है श्रोतों, पंजाब में दे दी गई है। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और वाकई में ही हम आज़ाद हुए हैं लेकिन अपनी मानसिकता को हम कैसे आज़ाद करें, ये एक सवाल आप सभी से। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम। गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम में। श्रोतों बिल्कुल गीत संगीत बिल्कुल चले हुए हैं, देशभक्ति के गीत संगीत जो है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ जानकारियों का पिटारा जो है वो भी हम साथ ही साथ खोल रहे हैं। श्रोतों एक बार पुनः आप सबको आज़ादी के इस महान पर्व की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र है, विकसित भारत। विकसित भारत बनने के लिए ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, और 2047 में विकसित भारत बना कर रहेंगे श्रोतों, है ना जी। तो उसके लिए हमें जो है वो सबसे पहली बात, कहते हैं कि हर देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो युवा होता है श्रोतों, और युवा अगर हमारा सूखे नशे में पड़ गया, युवा अगर हमारा सूखे नशे में लतपत हो गया, तो फिर हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। एक साइड हम अपने एक साइड श्रोतों हम उन वीरों की बात करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, और एक साइड हम जब ये पन्ना खोलते हैं भारत की किसी किताब का कि जहाँ पर या ये पन्ना खोलते हैं या ये दृश्य हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से जो है वो नशा फैल रहा है। हम दूर क्यों जाए, हिमाचल में देख लीजिए आए दिन जो है वो चिट्टे से रिलेटेड केस मिलते हैं, पंजाब में देख लीजिए उड़ता पंजाब बन चुका है। तो सबसे पहले तो हमें इस लड़ाई से लड़ना होगा, इस नशे की लड़ाई से जो है वो लड़ना होगा, जो हम सभी के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है श्रोतों। इस नशे ने न जाने कितने ही घर जो है वो बर्बाद कर दिए हैं, इस नशे ने न जाने कितने ही सुहाग जो है वो छीन लिए हैं, कितने ही माओ के बेटे जो हैं वो छीन लिए हैं, कितने ही बहनों के भाई जो हैं वो ये नशा मार गया है श्रोतों। तो हम इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं, आइए हम कोशिश करते हैं कि नशों से दूर रहें और युवाओं को भी नशों से जो है वो दूर रखें, ताकि हमारा युवा जो है वो, हम सभी जानते हैं कि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन हमारा युवा जो है वो बिल्कुल आज़ाद रहे, नशे के चंगुल से भी आज़ाद हो जाए, ये कामना हम सभी करते हैं, हम सभी देशवासी करते हैं। श्रोतों आपसे कुछ ही देर में जो है वो पूरे 7 बजे आप सुनेंगे समाचार, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

0: संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफिर अखोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर को अनोखे और प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए एक वैश्विक रिले श्रृंखला सूर्यपथ तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उगते सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए दुनिया भर का चक्कर लगा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, मिस्र, लातविया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावासों ने देश के गौरव और एकता के इस उत्सव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया। लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया गया है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने विल्स को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया है, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
10: दीवार पे लगाने वाला ना है टीवी।
11: टीवी देखने बुलाएंगे?
12: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
13: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
14: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
15: क्यों?
14: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
16: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
17: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
18: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
19: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
20: मैं तो बुरी।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। शोतो, चलिए देशभक्ति की बातें जो हैं वो बिल्कुल हो चुकी हैं और आज़ादी को आगे बढ़ाने वाले हम सभी हैं, मतलब आज़ादी को आगे बढ़ाने वाले हम सभी हैं। हमारे जज्बे जो हैं वो कायम रहें, हमारे जज्बे जो हैं वो सलाम रहें। श्रोतों,

इसी के साथ जानकारियों का पिटारा खोलते हैं और अगली जानकारी की ओर जो है वो आप सभी को लेकर चलते हैं, श्रोताओं रूबरू करवाते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आज हमीरपुर ज़िला के बड़सर में जो है वो श्रोताओं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास की सलामी दी। श्रोतों परेड के नेतृत्व परेड कमांडर एवं पुलिस उप अधीक्षक चौहान साहब थे। परेड ने राज्य पुलिस IRB और IRB पंडो, जिला पुलिस हमीरपुर, हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड तथा यातायात पुलिस की टुकड़ियों ने भाग लिया। श्रोतों ये 7-स्टार स्कूल वाणी, एक बार फिर से दोहराऊंगा, 7-स्टार स्कूल वाणी राजकीय डिग्री कॉलेज बड़सर, ब्राइट सेन स्कूल बड़सर तथा न्यू ब्राइट सेन बारिश माध्यमिक बड़सर के विद्यार्थियों ने भी जो है वो मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। श्रोतों पुलिस बैंड और होमगार्ड बैंड ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। श्रोतों इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चौथे श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह वेतन बकाए के रूप में जो है वो अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच जो सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को इसी माह उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाए का अतिरिक्त 35% भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी जो है वो इसी माह उनके पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन बकाया का 15% भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन भुगतानों पर सरकार 281 करोड़ रुपया खर्च करेगी। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर में 100 नए CBSE स्कूल खोलने की भी घोषणा जो है वो की। श्रोता उन्होंने घोषणा की है कि इस माह से लेकर 31 मार्च 2027 तक जो है वो सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों की सेवाएं जारी रहेंगी और वह 31 मार्च 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जो है वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत लगभग 9,000 आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मासिक प्रोत्साहन को भी 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया जाएगा। श्रोतों जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। श्रोतों आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, ऐसा देश है मेरा।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडी गुंजन है और मैं सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम इस समय आप बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। श्रोतो अभी कुछ देर पहले लाइव से पहले जो है वो मुझे कॉल आई थी और मेरे एक जानने वाले जो हैं वो काफ़ी बीमार थे। वो कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ तब जो है वो बुखार टूट जा रहा है, लेकिन उसके बाद नियंत्रण जो है वो बुखार मुझे आ रहा है, 103-102 जो है वो रह रहा है। तो श्रोताओं मैं बताना चाहता हूँ, बारिश के मौसम में कुछ लोगों को जो है वो सर्द सिर में दर्द की शिकायत रहती है, या यह दर्द कभी हल्का तो कभी तेज हो जाता है ना। कुछ को सुबह के समय जो है वो तेज़ दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या बारिश सीधे सर दर्द की वजह है? डॉक्टरों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो सिर दर्द का कारण सीधे तौर पे तो बारिश से जुड़ा नहीं होता श्रोतों, लेकिन मौसम में होने वाले बदलाव कुछ लोगों में जो है वो सिर दर्द या माइग्रेन को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। श्रोतों बारिश के मौसम में तापमान में बदलाव आता रहता है, हवा में नमी भी रहती है और नमी का तो उतना असर नहीं होता, लेकिन तापमान शाम और सुबह को हल्का कम, तापमान जो है वो सुबह और शाम को जो है आप सभी जानते हैं कि एक एक दो दो या तीन तीन डिग्री जो है वो गिर जाता है श्रोतों, है ना। तो ये एक कारण है श्रोतों, है ना जी। अब हम कैसे पहचाने कि ये माइग्रेन का दर्द है या बारिश से हो रहा है? अगर तेज रोशनी, तेज आवाज़ में सिर दर्द बढ़ता है और इसके साथ ही उल्टी जैसी समस्या भी होती है तो ये माइग्रेन हो सकता है। ऐसे लोगों में बारिश और मौसम का बदलाव एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है श्रोताओं। डॉक्टर कहते हैं कि बार बार होने वाले सिर दर्द में बिना सलाह लगातार दर्द की दवा लेना जो है वो सही नहीं है श्रोताओं। अगर सिर दर्द अचानक बहुत तेज हो जाता है या साथ में बेहोशी, बोलने में दिक्कत, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी हो तो इसे सामान्य सिर दर्द मानकर जो है वो घर पर इलाज ना करें, बल्कि तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जाएं। हम सभी जो हैं वो नॉर्मल लेते हैं, सर दर्द हो रही है सर दवा दीजिए, है ना, और सर दवा दीजिए, या फिर सर में हम तेल लगा लेते हैं या डिस्प्रिन सेराडोन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए श्रोताओं सबके लिए जो है वो सही नहीं है, है ना। तो बिना डॉक्टर की सलाह लीजिए, बिना डॉक्टर की सलाह जो है वो इस तरह के काम ना करें, डॉक्टर की सलाह जो है वो ज़रूर लें श्रोताओं, और उन्हीं की सलाह पर जो है फिर बाद में आप खाना भी खाएं, उन्हीं की सलाह से जो है वो आप दवाई भी खाएं और खाना भी ज़रूर खाएं, है ना। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब अगले गीत की ओर। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, वीडियो गुंजन धर्मशाला के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही श्रोताओं इसी कदर। ये बहुत प्यारा सा गीत है श्रोताओं और ये गीत हमें बहुत कुछ जो है वो याद दिलाता है। आइए आप सभी तक भी पहुंचाते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट पर।

श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इस वक्त चला हुआ है आपका अपना आरजे सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। तो संदेश आते हैं, ये गीत हम सभी ने बाखूबी सुना वीडियो सेट पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, और अंतराल के बाद वापस मिलते हैं आप सभी के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ। 8:46 हो गए हैं श्रोतों, अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
7: बनता है जब वो अपने सपनों, अपने संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। देश अब छोटे सपनों से नहीं बल्कि बड़े सपनों से चलेगा। प्रदेश भर में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह हमीरपुर जिला के बड़सर में हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस IRB धौलाकुआं, पंडोह, बड़सर, हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड और यातायात पुलिस की टुकड़ियों ने भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
8: हमीरपुर जिले के बड़सर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का मैदान आज राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का गवाह बना, जहां दूर दूर से पारंपरिक वेशभूषा में आए लोगों ने आज़ादी के इस पर्व में उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन एरियर के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान इसी महीने किया जाएगा।
9: मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि क्लास 4 कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ भी घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त क्लास 3 पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों को उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर का अतिरिक्त भुगतान 35% की दर से इसी माह कर दिया जाएगा। क्लास 1 व क्लास 2 पेंशनों व पारिवारिक पेंशनों को उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 15% एरियर का भुगतान इसी महीने कर दिया जाएगा।
8: मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ता 800 रुपए करने का

0: स्कूल खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ।
1: सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने वन मित्रों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि करने और 734 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करने का ऐलान भी किया।
0: वन मित्रों के 2000 पद भरे गए हैं और इनका मानदेय पिछले एक साल से 10000 रुपया था, मैं इसे बढ़ाकर 12000 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। सभी पंचायतों की ग्राम पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 पद, शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद और जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों के 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 1975 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एक एक चौकीदार तथा एक एक मल्टी टास्क वर्कर के 4000 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में अब कांस्टेबलों के 734 और पदों पर भर्ती होगी। हमारी सरकार मल्टी टास्क वर्कर और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के प्रति संवेदनशील है। हम सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इन्हें लाभ देने के लिए एक नीति लाने पर विचार किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 2 अक्टूबर से अपना परिवार सुखी परिवार और इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए बड़सर से मैं रितेश कपूर।
2: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को 80 करोड़ रुपए की संपत्ति दान करने वाले 77 वर्षीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कंवर को सम्मानित किया। उन्होंने अपनी 80 करोड़ रुपए से अधिक की पूरी चल व अचल संपत्ति अस्पताल को दान की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग 5000 पात्र लाभार्थियों को 20,61,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसमें विवाह सहायता योजना के तहत 1,758 लाभार्थियों को लगभग 9 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। शिमला स्थित लोकभवन में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण और नशा मुक्त हिमाचल अभियान में युवाओं से सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से भारत को आज़ादी मिली। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। उधर चंबा में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऐतिहासिक चौगान मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने धर्मशाला में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने पुलिस ग्राउंड में तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद किया जाएगा। उन्होंने आज नाहन में कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई।
3: हमारा दिल्ली दौरा था और संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा, मंत्रिमंडल फेरबदल मॉनसून सेशन के बाद किया जाएगा।
2: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम रही। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की और तिरंगा फहराया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के लिए बड़ी संख्या में मां भारती के सपूतों ने शहादत पाई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के ठोडो मैदान में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला की विभूतियों को सम्मानित किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी में जिला स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सिरमौर का जिला स्तरीय समारोह नाहन के चौगान मैदान में हुआ, जहां तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ध्वजारोहण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। ऊना में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की और देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया।

0: स्पीति का जिला स्तरीय समारोह केलंग में हुआ, जहां विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने तिरंगा फहराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वाधीनता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। हमीरपुर जिला के बड़सर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी महीने वेतन बकाया के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपये देने का ऐलान। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने और अगले साल 100 नए CBSE स्कूल खोलने की घोषणा। और स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियां सम्मानित। कामगार कल्याण बोर्ड के तहत लगभग 5,000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वीडियो जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतों, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता है मारा, है ना जी। तो मैं सचिन कपूर ले लेता हूं आपसे अलविदा, और जाते जाते बस यही कहूंगा, प्रकृति की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, और अपने भारत देश के साथ प्यार करें, गद्दारी ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।

0: जल का नहीं जल की,
1: जीवन उसकी पानी
0: उसका।
1: पापा पापा दूध उबल रही है।
2: उबल रहा है रहा।
1: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रूम से चटनी चढ़ाया।
3: चटाई
1: ओहो दादू इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
4: बेटा खाया नहीं खाई।
1: ओके ओके मम्मी लाइट चला गया।
0: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
2: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
1: वो तो आ गई।
0: आ गई नहीं लाइनमैन आ गया।

दोस्तों जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते हैं।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए?

0: जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल,
0: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
0: मामा
2: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
3: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
4: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
5: टीवी देखने बुलाएंगे?
6: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
7: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
5: क्यों?
7: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
8: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
9: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
11: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
10: मैं तो बुरी।

0: स्कूल में क्या सीखा?
1: मछली जल का रानी,
0: जल का नहीं जल की,
1: जीवन उसकी पानी
0: उसका।
1: पापा पापा दूध उबल रही है।
2: उबल रहा है रहा।
1: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रूम से चटनी चटाया।
3: चटाई?
1: ओहो दादू इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
4: बेटा खाया नहीं खाई।
1: ओके ओके मम्मी लाइट चला गया।
0: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
2: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
1: वो तो आ गई।
0: आ गई नहीं लाइनमैन आ गया।

तो जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
5: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
6: मामा, नो शेयरिंग।
5: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
6: कौन था?
5: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
6: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो हमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
5: स्मार्ट गर्ल।
6: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
5: याद है ना, नो शेयरिंग।
6: मामा,
7: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
8: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
9: कहाँ रखेंगे टीवी?
10: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
11: बस दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
12: टीवी देखने बुलाएंगे?
13: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
14: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
15: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
16: क्यों?
15: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
17: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
18: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
19: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
2: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
0: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते हैं।

आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी एक वरदान है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

रेडियो सेट पर ट्यून किया है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

हरिजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज़, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।